ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026। इस समय सवेरे के 5:36 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात, हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप जुड़ेंगे हमारे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से। कृपया प्रतीक्षा करें।

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता

0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन सीईटीए और डीसीसी का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
3: ये है विविध भारती।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरितमानस का भाग 250। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग का भाग 3। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर, प्रस्तुति रूपाली रूपक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 और 7:30 पर होगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 और 8:15 और दिन में 2 सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक में। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार मदन मोहन पर। आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम को दोबारा सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 और 12 सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ और जुड़ जाइए फेसबुक पर कमेंट्स द्वारा। दोपहर समाचार का समय होगा दिन में 2:15 पर और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम होगा दोपहर 3 और दोपहर बाद 4 सुनिए पिटारा के अंतर्गत। आज के मेहमान में साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। नए पुराने। ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से शाम 6:30 तक और इसी के बीच आप सुनेंगे 6 हिंदी में समाचार। 6:30 शाम में सुनिए झरोखा 6:35 पर संध्या रंजन। जयमाला कार्यक्रम का समय होगा शाम 7 और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। रात्रि 8 हवा महल के अंतर्गत सुनिए झलकी वादों की शाम। लेखक मदन मोहन खन्ना, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 और 10 सुनिए छाया गीत कार्यक्रम। आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30। और रात 11 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आप सुन सकेंगे आज शाम 6:30 पर झरोखा के ही अंतर्गत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्री रामचरितमानस का भाग 250वां सुनिए।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट।

गया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसियाकर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को मेरा आरती

अंकलीकर का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले हम रागपुर या धनाश्री और रागपूर्वी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को रागपुरिया के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सारे संधि प्रकाश राग जो हैं, इनमें जैसे मैं पहले आपको कह चुकी हूँ कि ऋषभ और धैवत इनमें कोमल ही होते हैं और मध्यम हमेशा तीव्र होता है, लेकिन पूरिया में धैवत शुद्ध है। और पूरिया का जो सप्तक है, यानी जो आरोह अवरोह है, और इसमें जो सुर हैं, वही सुर राग मारवा में भी हैं, वही राग सोहनी में भी हैं, लेकिन फिर भी राग पूरिया अपनी एक शक्ल बनाए हुए है। यही सुंदरता है हमारे अभिजात संगीत की। पूरिया में कोमल ऋखभ, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध धैवत, शुद्ध निषाद। इसकी जाति षाड़व है क्योंकि इसमें पंचम वर्जित है। इसका आरोह है नीरे गामा धनी सा, तो म और ध के बीच में पंचम है ही नहीं, तो इसकी वजह से सप्तक जो है, यानी इसका आरोह जो है, सिर्फ छह सुरों का हो गया। इसकी वजह से इसकी जाति है षाड़व और अवरोह है सानी धमा गरेसा। अवरोह में भी तो पंचम वर्जित है। राग पूरिया की उत्पत्ति जो है मारवा ठाट से मानी जाती है। इसका वादी स्वर है गंधार और संवादी है धैवत। पूरिया गाते समय अगर तानपुरे की पहली तार को अगर निखाद में मिलाया जाए तो इस राग की खूबसूरती जो है और बढ़ जाती है। राग पूरिया का जो आरोह अवरोह है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।

राग पूरिया और राग मारवा और राग सोहनी तीनों रागों के स्वर जो हैं एक ही है, लेकिन उन्हीं स्वरों को देखिए किस तरह से उसका चलन आना जाना रखा है। पूरिया का जो चलन है कुछ इस प्रकार का है।

आज मैं आपको राग पूरिया में एक बंदिश सुनाने जा रही हूँ, जो ताल तीन ताल में निबद्ध है। मैं मिल आई अपने पिया को,

अभी आपने राग पूरिया का परिचय सुना, अब हम एक फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं। राग पूरिया पर आधारित ये फिल्मी गीत आशा भोसले की आवाज में है।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सती नाग कन्या इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। इस गीत की रचना की है जीएस नेपाली ने और एसएन त्रिपाठी का संगीत।

गीता दत्त की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं श्रीमती 420 इस फिल्म का गीत। रचनाकार जानिसार अख्तर और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: मजा ये जिंदगी है तू मुस्कुराएगा।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं रंगीन रातें। इस फिल्म का गीत आवाज लता मंगेशकर की, केदार शर्मा के बोल, रोशन की धुन।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनिए पटरानी फिल्म का ये गीत। रचनाकार शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जल्दी फिल्म का गीत प्रीति दुबे की आवाज में। हिम्मत रॉय ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर का संगीत।

0: कहानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं द्वारकाधीश इस फिल्म का गीत, आवाजें मन्नाडे और साथियों की, भरत व्यास के बोल अविनाश व्यास की धुन।

और लीजिए अब सुनवाते हैं आपको सुनमुख बाबू का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और साथियों ने। फिल्म का नाम सती परीक्षा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आज 9:30 बजे यानी कि 9:30 पर सुनना ना भूलिए संगीतकार मदन मोहन पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आलेख और स्वर होगा ममता सिंह का और प्रस्तुतकर्ता होंगे रमेश गोखले। इसी के साथ आज के इस भूले आज का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगाज करते हैं फिर जन्म लेंगे हम इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गौहर कानपुरी ने इसकी रचना की है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

पलकों की छांव में। इस फिल्म का गीत सुनी किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गुलजार की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: महबूबा फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे शब्दबद्ध किया है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत फिल्म कस्मे वादे से। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
2: राज कवि तुलसी का लिखा ये गीत अब सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म का नाम कर्म।

श्रोताओं, समय की कमी के चलते इस गीत को आज हम इतना ही आपको सुनवा पा रहे हैं। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। अब दीजिए हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत

0: करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता

0: मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात

0: शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं, वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

दोस्तों, किसी ने कहा है, प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन कौशल लगातार अभ्यास और सीखने से विकसित होता है। हर युवा अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसे सोपान हैं जो हर युवा को अपने व्यक्तित्व और कौशल को निखारने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला सोपान, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके अलावा निरंतर सीखने की आदत, बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सोपान है अनुशासन और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव रखता है। चौथा सोपान है संवाद और आत्मविश्वास। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और पांचवा सोपान है तकनीकी और डिजिटल दक्षता, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और लगातार अभ्यास करें। यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। चला जा।

दोस्तों, आज का युग डिजिटल और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। ऐसे में रोजगार के अवसर भी तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवा अपने कौशल के बल पर

रोजगार तलाशते हैं, वो अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। यदि युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण पा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन संचालक और CNC मशीन, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी आज रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जरूरत है उन्हें अपनी प्रतिभा जानने और पहचानने की। सरकार की ओर से भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और कम समय में अच्छे रोजगार तलाश सकें। जो युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं वे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय भी वे चला सकते हैं। तो युवाओं के सामने रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि सही रास्ता वो चुन सकें।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्हीं ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। नए गीतों के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लेम्बर हुसैन पुरी की आवाज में तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत, राज शेखर की रचना और कृष्णा का संगीत।

कुणाल खांजोवाला और ऋचा शर्मा की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं सिंघम फिल्म का ये गीत, स्वानन किरकिरे की रचना और अजय अतुल का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: चित्रलोक।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं रेडी फिल्म का गीत। तुलसी कुमार और केके की आवाजों में निलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और प्रीतम का संगीत।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं हॉन्टेड फिल्म का ये गीत केके और सुजैन की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शकील आजमी ने और चैतन भट्ट का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों को। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिव अप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। विधानसभा परिसर में होने वाले उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
2: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है, उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे, ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे। और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे, जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
1: प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुर में बैठक कर VC के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, ANM और CHO के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने प्रत्येक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि बीमित कामगारों और उनके परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने हैदराबाद से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 7 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत कोटा और भवानी मंडी में ESI औषधालय और शाखा कार्यालय शुरू किए गए हैं। कोटा और भवानी मंडी में आयोजित कार्यक्रमों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेस्ट जोन के बीमा आयुक्त रामजीलाल मीणा ने बताया कि इन केंद्रों से औद्योगिक क्षेत्रों के बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा तथा ESI की प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
3: यहाँ इन 2 स्थानों पर लगभग 85,000 परिवारों को ESIC की चिकित्सा और नकदी फिलहाल की सुविधाएं प्राप्त होगी। ये जो उद्योग नगर कोटा वाला जो डिस्पेंसरी है, ये 5 डॉक्टरों वाला डिस्पेंसरी और यहीं पे शाखा कार्यालय है, तो यहीं चिकित्सा लाभ भी मिलेगा और यहीं नकदी लाभ भी मिलेगा।
1: विश्व युवा कौशल दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए आईटीआई तथा कौशल विकास संस्थानों में प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। सवाईमाधोपुर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां रखी गई हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां युवाओं ने कौशल का प्रदर्शन करते हुए एआई, ड्रोन, सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। इनमें पर्यावरण अनुकूल चलित आवास और पुरानी पुस्तकों के डिजिटाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 4 बेसिन हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर और विंध्यन बेसिन शामिल है। इनमें से 3 में तेल की खोज और दोहन का काम हो रहा है। श्रीमती अरोड़ा ने कच्चे तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन और दोहन कर रही संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का राज्य की रिफाइनरी में ही परिशोधन हो, ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके। वीबी जीरामजी योजना के तहत श्रम नियोजन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को सभी विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थायी तथा गुणवत्तापूर्ण कामों को प्राथमिकता देने को कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पशु रोग नियंत्रण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा भी की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में चलाए गए गिवअप अभियान से 99 लाख पात्र जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। वे कल बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 67 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि 27 लाख लोगों ने EKYC नहीं करवाई। इससे पात्र परिवारों को योजना से जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य

0: ड्रॉप और इंटरनेट की गति का परीक्षण किया गया। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे 70 पर अधिकांश स्थानों पर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध रही, हालांकि कुछ हिस्सों में नेटवर्क कवरेज की कमी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी सामने आई। परीक्षण में 5G नेटवर्क पर डाउनलोड गति 40 से 55 MB प्रति सेकंड तथा अपलोड गति 7 से 14 MB प्रति सेकंड तक दर्ज की गई। ऐसे परीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। रिपोर्ट संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर दी गई है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिव अप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम FM रेडियो पिंक सिटी।

0: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है. वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं. रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर. कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर.
1: यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या.
0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM.
2: 9:12 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.3 FM. मैं हूँ तरुण और सुबह हो चुकी है, शुद्धवार बुधवार है और शुद्ध शुद्ध बातें जो होती है ना बड़ी अच्छी लगती है. और जब बुधवार आता है तो कई खुशियां भी, जैसे हम कहते हैं ना कोई नई चीज़ हो जाती है, कुछ हम कुछ नई चीज़ ले लेते हैं, वैसे ही एक खुशी की बात ये हो गई कि भाई हम जब मैच जीत गए 6 विकेट से इंग्लैंड से तो बड़ा अच्छा लगा. लेकिन इससे पहले जो चीज़ चल रही थी तो उसमें देख कर लगता था ये हुआ क्या है. पर एक बात इस बात से सिद्ध होती है जो कि एक कोटेशन कहता है कि परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, परिणाम जो होता है वो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है. तो ऑलवेज मेहनत करते रहना चाहिए. तो आज आपने क्या सोचा है, बिल्कुल तैयार रहिए आज के दिन की क्या क्या काम है, मेहनत से लग जाइए. और अभी हम भी मेहनत से लग जाते हैं और प्ले करते हैं प्यारा सा गाना. सुनते रहिए 100.3 FM. गुड मॉर्निंग.

0: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ के प्रायोजक हैं आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
1: धूल धुआं पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल
2: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
1: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
2: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
3: 9:15 और 43 सेकंड हो रहे हैं। मैं हूं तरुण और आप सुन रहे हैं 100.3 FM। और बुधवार के दिन आप इंतज़ार करते हैं कि आज हेल्थ से जुड़ी क्या बात होगी जो हमारी वेल्थ बन जाएगी। जी हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज इसमें क्या बात करें, आज वो बात करते हैं ना जो कि हम अक्सर एक दूसरे से कर रहे होते हैं। इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी बात चल रही है। कोई कहता है मौसम ख़राब है साहब, मेरा पेट ख़राब रहता है। क्या बात है, ये गैस बहुत हो रही है, पेट दर्द भी है, ये अब रोज़ की सी बात लगने लग जाती है, है ना। ये आपस में कह रहे होते हैं। कुछ कहते हैं अरे फूड पॉइजन हो गया होगा, बाहर का खा लिया। अच्छा, ये मौसम तो थोड़ा बदल रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है तो शायद इस कारण से कुछ हो रहा है। कहीं पानी में तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन हम बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है या हो सकता है IBS या IBD। अब आप बोलेंगे तरुण ये क्या चीज़ है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ लीवर और आंत वाली, जी हाँ, लीवर एवं आंत रोग विशेषज्ञ। आज हमारे साथ में डॉक्टर आदित्य व्यास, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी SMS हॉस्पिटल। तो इनसे बात करते हुए आज आपकी सारी बातें आप भी पूछिएगा, मैं भी आपकी तरफ से कुछ सवाल पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है 100.3 FM पर सर आपका।
4: धन्यवाद सर।
3: डॉक्टर आदित्य व्यास बहुत जाने माने एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और बस जो भी आता होगा आपके पास सर वो यही कहता होगा साहब मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, दर्द हो रहा है, या क्या एक नॉर्मल बात क्या कहता है कोई भी पेशेंट आपको?
4: सर हाँ, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पेट से रिलेटेड ही आते हैं। और जो ये आप बता रहे हैं पेट में दर्द है, मरोड़ है, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और इससे रिलेटेड फिर हम उसके पेशेंट की क्या कंप्लेन है, क्या लक्षण है, उसको कितनी अवधि से बीमारी है या और कोई लक्षण भी हैं क्या, उसके आधार पर उसका निदान करते हैं और दवाई देते हैं सर।
3: जी, तो इसमें जैसे हम बात करें, आजकल IBS बहुत लोग बात भी करते हैं। पहले तो लोग यही कहते थे कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पर अब थोड़े से सब लोग समझदार हो गए। अब AI का भी ज़माना आ गया और पेशेंट भी काफ़ी रिसर्च करके ही डॉक्टर के पास जाते हैं आजकल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर के पास सीधे जाना चाहिए, खुद से रिसर्च और मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं IBS की। आजकल ये बहुत सुनने में भी आ रहा है, और ये बताइए ना, ये होता क्या IBS, और क्या ये कोई आंतों की कोई बीमारी है या हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ कोई समस्या है, क्या है ये IBS?
4: सर सबसे पहले सभी प्रिय श्रोताओं को नमस्कार। IBS की बात करें तो इसका मतलब होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसमें आंतों की कोई सूजन या घाव नहीं होते हैं। इसमें इसका प्रमुख जो लक्षण है बार बार पेट में दर्द होना है, और उसके बाद टॉयलेट जाने से उसमें आराम मिलता है। इसके साथ साथ उसमें गैस बनना या पेट में मरोड़ आना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, कभी दस्त होना, कभी कब्जी होना। इसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कहते हैं। एक आसान भाषा में समझें तो जैसे कोई कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, अगर उसका हार्डवेयर ठीक है और सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो ये सॉफ्टवेयर की बीमारी है, इसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कहते हैं।
3: मतलब सॉफ्टवेयर की बीमारी है, हार्डवेयर की नहीं है।
4: यस सर।
3: तो ये हम इसको सही कर सकते हैं खुद से।
4: यस सर।
3: अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार।
4: हाँ जी।
3: लेकिन इससे इसके बारे में और पूछूं, उससे पहले एक और जो लोगों की बात है मैं वही बात पूछा करता हूं अक्सर। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे तनाव या मुझे चिंता होती है ना तो मेरा पेट खराब हो जाता है साहब। तो क्या सचमुच में स्ट्रेस और जो एंजाइटी है उसका IBS से कुछ रिलेशन है? क्या इससे ऐसा भी लगता है कि दिमाग और पेट का क्या कोई कनेक्शन है ऐसा बीमारी का आपस में?
4: जी हाँ सर, बिल्कुल। और ब्रेन का और गट का, जो आंत का और दिमाग का सीधा कनेक्शन है, आपस में ये संपर्क में रहते हैं, इसे गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। तो सामान्य तौर पर भी अगर किसी व्यक्ति का कोई एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, वो किसी तनाव में हो, घबराहट हो, तो पेट अक्सर ख़राब हो जाता है। किसी को दस्त हो सकते हैं, किसी को कब्जी हो सकती है, तो इनका आपस में संपर्क होता है, ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है, इसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं सर।
3: तो मतलब ये हार्मोनल चेंजेस कुछ बॉडी में हो रहे होते हैं उसके कारण ये चीज़ें हो जाती हैं, और कई बार हम ज़्यादा विचार करते हैं तो कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, वो भी कुछ ऐसा कुछ?
4: जी बिल्कुल, इसमें जो मरीज़ है उसकी जो दिमाग उसके जो विचार चल रहे हैं, जो उसका कोई उसको साइकेट्रिक बीमारी हो, ऐसे मरीजों में भी, क्योंकि एक गट और ब्रेन का सीधा इंट्रैक्शन होता है सर, गट ब्रेन एक्सेस, तो आप दिमाग में आपके क्या चल रहा है उसका सीधा असर आँख पे भी पड़ता है।
3: तो ये IBS जो है, इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, तो ये बाउल सिंड्रोम जो है ये मतलब जब हम अक्सर जब भी शौचालय की तरफ इंसान जाता है तो वो ये सोचता है कि सुबह शाम एक दो टाइम कोई जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि खाना खाते ही, मतलब चाहे 3 बार खाएं चाहे 4 बार खाएं, उसके तुरंत बाद वो ऐसी सिचुएशन बनती है कि नहीं अब तो रुका नहीं जा सकता, ये क्या IBS से रिलेटेड है?
4: जी हाँ, इसे खाना खाते ही जब हमें शौचालय जाने का एहसास होता है, इसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ये सामान्य रिफ्लेक्स है, बच्चों में होता है, अगर बड़ों में भी ये है और बहुत ज़्यादा है तो IBS का लक्षण हो सकता है।
3: तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग होते हैं कि इस कारण से सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगा, लेकिन उसके बाद में भी वो फील आने लग जाता है, अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या लाइफस्टाइल में कोई सुधार है या इसका मेडिकल ही या दवाइयां ही इसका इलाज है?
4: इसमें मरीज़ के क्या लक्षण हैं, कितनी अवधि से लक्षण हैं, उसके शारीरिक परीक्षण करके और ज़रूरत हो तो कोई जांच भी, इन सारी चीज़ों के आधार पे ही सही निदान करके हमें उसका उपचार करना चाहिए।
3: बिल्कुल सही। तो इसमें ये बात समझ में आती है श्रोताओं कि हमें कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हम क्या कई बार जो घरेलू उपचारों में भी लगे रहते हैं और कई बार सोचते हैं कि चलो आंवला ले लिया है ना, और वो घर के चूर्ण बना के ले लेते हैं, पर उसके बाद में भी उस वक्त थोड़ा हो जाता है लेकिन फिर बाद में बोलता कि नहीं नहीं मेरा पेट रात में टाइट हो गया, अब मतलब ये चीज़ें होने लग जाती है। तो जैसे कुछ चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कोई ये चूर्ण लेते हैं या कोई मसाले लेते हैं, तो इन चीज़ों का क्या वास्तव में कोई फ़र्क पड़ता है, मतलब जो अपन लेते हैं इस टाइप की चीज़ें?
4: हाँ जी, IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसमें जो हम खाना खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है, और अक्सर ज़्यादा तेल वाला खाना, मसालेदार खाना, कई बार जो स्वीटेंड ड्रिंक्स बोलते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी पीने से भी, और कई लोगों में लहसुन प्याज इस तरह का ज़्यादा खाने से इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, और हर मरीज़ में हर खाने के अलग अलग परिणाम आते हैं। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप एक फूड डायरी होती है कि आपको किस खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो मेंटेन कर सकते हैं और वो उस खाने को

0: अवॉइड कर सकते हैं।
1: आपने अभी चाय कॉफ़ी का जिक्र किया, तो हमारे भारत में अक्सर जैसे दो दोस्त भी मिलते हैं तो चलो चाय बनवा लेते हैं, या कोई चाय नहीं पीता तो कॉफ़ी हो जाता है। तो एक अब अगर डॉक्टर कुछ ऐसा बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि साहब मेरी तो लाइफ में सुबह शाम ही कॉफ़ी पीता हूँ, क्या ये भी बंद करनी पड़ेगी? या सुबह शाम ही चाय पीता हूँ तो ये भी बंद करनी पड़ेगी? वो एक ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं।
0: नहीं सर, आपके लक्षण पे डिपेंड करता है। दो बार चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से ऐसी दिक्कत नहीं आती है, और बाकी जो आपके सारे लक्षण हैं आपका परीक्षण करके अगर कोई जांच की ज़रूरत है तो उसके आधार पे ही बताया जा सकता है।
1: और इस बारे में जब डॉक्टर तक लोग पहुंचते हैं, और इनफैक्ट एक जनरल सी बात होती है कि डॉक्टर साहब ने पिछली बार ये दवाई लिखी थी, इस बार मेरे को ऐसी दिक्कत हो रही तो यही दवाई ले लेता हूँ, और बिना सोचे समझे वही पुरानी, क्योंकि कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के गैस या कब्ज़ की दवाइयाँ कई महीनों तक लेते रहते हैं। क्या ऐसा करना सही है? क्या इससे कोई बीमारी छिप सकती है, या मतलब ठीक हो जाएगी, या वो दब गई फिर बाद में बड़ी होकर उभरेगी? कई बार ऐसा होता है।
0: जो आप कब्ज़ की या गैस की बात कर रहे हैं, अगर यह उस कुछ रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, चिंताजनक साइन बोलते हैं, अगर वो आपके मरीज़ में हैं, जैसे 45 या 50 के वर्ष की आयु के बाद पहली बार गैस बनना या कब्ज़ी होना या दस्त लगना या लैट्रिन में खून आना या खून की कमी या तेज़ दर्द बुखार या फिर खून की कमी होना, अगर ऐसा है, या फिर आपके परिवार में किसी को IBD जिसकी बात हम करेंगे आगे, या आंत का कैंसर की हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको ज़रूर पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपके जो लक्षण आ रहे हैं कितने समय से हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलके सही निदान पहले करना चाहिए।
1: जी, अब ये जैसे आपने IBD का बीच में नाम ले लिया, अब हम इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन IBS की पहचान कैसे करें एक जनरली घर पर, कि ये ऐसे मुझे ये दिक्कत है तो मुझे डॉक्टर साहब के पास जाकर ये टेस्ट करवाने चाहिए, या मन में क्या ख्याल आता है? जो भी एक बीमार होता है वो ज़्यादा इस चीज़ को सोचने लग जाता है, थॉट, वो जैसा आजकल प्रोसेस है लोग सर्च करने लग जाते हैं, अच्छा मेरे को लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है तो वो ChatGPT से पूछेंगे मेरे लेफ़्ट में दर्द हो रहा है मुझे क्या करना चाहिए, तो ये कितना घातक है सर?
0: सर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, अगर आपको पहली बार कोई दिक्कत हो रही है, कब्जी नई कब्जी है, नया पेट दर्द है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, खुद से निदान नहीं करना चाहिए। वो आपके लक्षण कितने समय से हैं, क्या लक्षण हैं, कितनी अवधि से ये लक्षण आ रहे हैं, आपकी उम्र, आपकी फैमिली हिस्ट्री के आधार पे कुछ जांचों की भी ज़रूरत पड़ती है, उनके आधार पे सही निदान बनाते हैं और उसके आधार पे आपको दवाई दी जाती है। IBS के लिए विशेष कोई ऐसा ब्लड टेस्ट या कोई जांच नहीं है, कोई स्कैन नहीं है,
1: जी
0: बाकी जो कॉमन बीमारियां हैं उनको आप उनके लिए जांच करा के उनको रूल आउट करके आपका डायग्नोसिस या निदान IBS किया जाता है और उसके आधार पे दवाई दी जाती है।
1: मतलब IBS का ऐसा कोई जांच नहीं की जाती है,
0: Yes.
1: वो डॉक्टर खुद से समझ के और वो करते हैं। राइट डॉक्टर साहब, क्या IBS जो है ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? कई ये सोचते हैं कि अब मेरे को ये दिक्कत हो गई तो कई सालों से तो मेरा पेट खराब रहता है साहब, मैं तो ये प्रॉब्लम लेकर ही जाऊंगा, ये लोग सोचने लग जाते हैं। काफ़ी एजड पर्सन से भी मैंने बात की, बोले कि साहब मैं बचपन से ही पेट की बीमारी से परेशान हूँ और मेरे को ये दिक्कत होती है, तो ये अच्छा कहीं कुछ टेस्ट में नहीं निकलता है, ठीक है कभी ठीक हो जाता है कभी पेट सही रहता है, तो सही खान पान का जो कंट्रोल है जो हम करना चाहिए हमें लाइफ स्टाइल में, और सही दवाइयाँ, इसकी मदद से कितनी वक्त में, या ऐसा ड्यूरेशन अगर हम देखें तो IBS से बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है?
0: जी हाँ, IBS ज़्यादातर मरीज़ अगर सही निदान उनका हो जाए और वो डॉक्टर से सलाह लें तो उनको आराम आ जाता है, और इसके लिए सही खाना पीना और व्यायाम, अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिटेशन वगैरह भी, अपना जो स्ट्रेस है उसको कम करना और ज़रूरत पड़ने पे दवाइयाँ, इन सारी चीज़ों को मिलाकर बहुत से मरीज़ों को आराम आ जाता है।
1: जी, तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं इसको। अब IBS को आपने समझ लिया, IBD की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं, कोई ऐसा गीत जो बहुत पसंद आता हो, क्योंकि जब FM पर एक डॉक्टर हो तो उनकी पसंद का गीत ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता।
0: जी हाँ, हम गुलाबी शहर में बैठे हैं तो वही गाना चला सकते हैं।
1: गुलाबी शहर वाला गाना कौन सी फिल्म से?
0: शुद्ध देसी रोमांस।
1: जी चलिए डॉक्टर साहब आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और उसके बाद श्रोताओं आप बने रहिए, आगे हम आईबीडी की बात करेंगे। ये है हेल्थ इज वेल्थ ओनली ऑन 100.3 FM।

0: धूल धुआं पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल
1: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी
0: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
1: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
2: हेल्थ इज वेल चल रहा है, आप सुन रहे हैं 100.3 FM और आज हम बात कर रहे हैं कुछ पेट संबंधी, जी हाँ, लीवर और आंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य व्यास हमारे साथ में हैं, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और अब इनसे बात करते करते हम जब ABS को पूरी तरह समझ चुके हैं, सॉरी IBS को समझ चुके हैं, तो अब IBD की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये अक्सर क्या होता है, कन्फ्यूज़ होते हैं हम जो भी पेशेंट हैं कि IBD और IBS एक ही बीमारी समझने लगते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो आप श्रोताओं को ये बताइए डॉक्टर साहब कि IBD क्या है और ये किस तरह से अलग है।
3: IBD का अर्थात है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इस बीमारी में वास्तव में आंत में सूजन और घाव होते हैं। ये गंभीर बीमारी है और इसका सही निदान, सही समय पर निदान और उपचार बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसको क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। क्रॉन्स डिजीज में आपके मुंह से लेके गुदा द्वार तक कहीं पे भी घाव हो सकते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जैसा इसमें नाम में है, बड़ी आंत में घाव होते हैं और लगातार घाव रहते हैं। इसके मुख्य लक्षण बार बार दस्त लगना और दस्त के साथ मल में खून भी आ सकता है। और क्रॉन्स डिजीज में पेट में दर्द, पेट में फुलावट, दस्त, कब्जी, बुखार और दोनों ही बीमारियों में खून की कमी, बुखार और वज़न कम होना, यह भी आमतौर पर देखा जाता है।
2: तो इसकी रीज़न क्या होते हैं, क्यों हो जाती है बीमारी?
3: इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के कई कारण हैं और इसमें अनुवांशिक, जो जेनेटिक बोलते हैं हम, यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। तो अपना जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वही जब अपने आंत के खिलाफ काम करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है, तब यह बीमारी होती है। इसमें खान पान का, आपके जो गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं, जो अपने हेल्दी माइक्रोबायोटा होते हैं जो आंत में रहते हैं, उनका ऑल्ट्रेशन होना, ऑटोइम्यून डिजीज़ होना, जेनेटिक कारणों से भी, कुल कई कारणों से यह बीमारी होती है।
2: तो ये तो अलग अलग कारण हो गए। अब यहाँ पर जब हम बात करें कि इसकी पुष्टि कैसे जैसे हो जाती है कि भाई अब दोनों में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी भी है, उधर भी दस्त लगना और वो मल की जो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि सीधा यही है कि हम क्या बाहर जो जा रहा है वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट? और वो पाचन तंत्र और सारी चीज़ें मिलके जब उस चीज़ को बनाती हैं, जो तो ये जो जलन आजकल कहते हैं कि साहब बहुत खाना खाते ही मुंह में, मतलब 4 घंटे भी हो गए पर मुँह में आ रहा है कुछ, ऐसे जल सा रहा है, गले में जल रहा है, तो क्या ये इसके लक्षण हो सकते हैं?
3: सर हो सकते हैं, लेकिन जो जलन होती है छाती में या खाना ऊपर आता है उसको रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। जो खाना ऊपर आ रहा है वह अलग बीमारी है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ अलग बीमारी है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में जैसे मैंने बताया, घाव होते हैं, सूजन आती है, कई बार आंत में सिकुड़न भी आ जाती है जिसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, दस्त होना, लैट्रिन में खून आना, बुखार, खून की कमी, ये सारी दिक्कतें आती हैं।
2: तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर जांच होती है जिससे ये पता चले कि IBD है?
3: जी हाँ बिल्कुल। और इसके लिए सबसे पहले मरीज़ के क्या लक्षण हैं, कितने समय से उन्हें ये लक्षण हैं, फिर जो खून की जांच होती है, एंडोस्कोपी जिसे कोलोनोस्कोपी हम कहते हैं, जो बड़ी आंत की एंडोस्कोपिक द्वारा जांच होती है, ज़रूरत पड़ने पे CT स्कैन, लैट्रिन की जांच, इन सारी जांचों से सही निदान हो सकता है और सही समय पे निदान होके इसका उपचार भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह लंबी बीमारी होती है।
2: लंबी बीमारी होती है, यहाँ इस बात को मैं पॉइंट करूँगा, लंबी बीमारी होती है। तो कितना वक्त तक इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है, या फिर ऐसा है कि जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, ऐसा है क्या?
3: सर ये क्रॉनिक जिसे बोलते हैं लंबी बीमारी, उस तरह की बीमारी है। इसमें रिलैप्स और रेमिशन होते हैं। जैसे रेमिशन मतलब जब बीमारी कंट्रोल में हो, आपका जो रोज़ाना का जीवन है आराम से चलता रहता है, आप दवाइयां लेते रहें, दवाइयां कुछ समय के लिए कम से कम कर दी जाती हैं जो आपकी बीमारी को बिल्कुल कंट्रोल में रखे, और ज़रूरत पड़ने पर अगर बढ़ जाती है बीमारी तो फिर से उसे दवाई बढ़ा के फिर से कम से कम रखा जाता है।
2: तो ओवरऑल अब हम इसको अगर लाइफ स्टाइल से जोड़ें, जैसे अक्सर कहा जाता है कि ज़रूर कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए पेट ख़राब हो गया, आपकी खाने की हैबिट या जो चीज़ें आप चुनते हैं वो सही नहीं है, सुबह आप वॉक पर नहीं जाते होंगे, कहीं आपने एक्सरसाइज नहीं करी होगी, बहुत सारी चीज़ें आजकल ये कही जाती हैं, तो हम क्या ऐसा ज़िंदगी में ऐसा शुमार कर लें, शामिल कर लें कि जैसे इस इन प्रॉब्लम से चाहे IBS हो चाहे IBD हो, इनसे दूरी बनी रहे कि भैया आप दूरी रहो तो हम आराम से जी पाएँ।
3: हेल्थ स्वस्थ जीवन और IBS और IBD बचने के लिए सही खान पान, व्यायाम, मेडिटेशन ये तो बिल्कुल ज़रूरत है ही, और साथ में स्मोकिंग जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इन्फ्लेमेटरी बाउल IBD के लिए भी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए, तो स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए। और IBS में भी बिल्कुल जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, व्यायाम, मेडिटेशन, सही खान पान और जिस खाने से आपको दिक्कत हो रही है उससे बचना ये बहुत ज़रूरी है।
2: बहुत अच्छी बात है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें। अब एक सवाल ये भी निकल कर आता है, क्या IBS किसी को है वो आगे चलकर IBD में कन्वर्ट हो सकता है?
3: जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, IBS एक आंत के संरचना में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई घाव है ना कोई सूजन है, बल्कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में सूजन भी है, घाव भी है, लैटरिन में खून तक आता है जो मल के साथ, तो IBS IBD में कन्वर्ट नहीं होता है, वो एक फंक्शनल डिजीज़ है IBS, और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है वो स्ट्रक्चरल डिजीज़ है।
2: तो इन दोनों को ही अवॉइड करना

0: कितना घातक हो सकता है आगे चलकर किसी भी पेशेंट के लिए। जैसे कई बार मैं हमेशा ये बात देखता हूँ कि हम लोग काफ़ी दिन इंतज़ार करते हैं तब जाकर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। सब सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही हो गया होगा, दवाई ले लेते हैं या नॉर्मल चीज़ें कर लेते हैं। तो किन परिस्थितियों में ये आगे चलकर जो लापरवाही है ये, या यूँ कहूँ कि एक थोड़ी समझदारी जो हम कर लेते हैं कि घरेलू उपचार कर लिया पर उसी से चलते रहे, अजवाइन की फांकी ले ली नमक के साथ में, बोले गुनगुना पानी पी लिया, नहीं नहीं इससे अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, या फिर कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको पानी में मिलाओ वो थोड़ा सा सोडा बन जाता है और पी जाते हैं और डकार आ गई ठीक हो गया।
1: जी हाँ, जैसे पहले भी हमने बात की है जो रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, चिंताजनक जो पॉइंट्स हैं, जैसे 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद पहली बार आपको ऐसी दिक्कतें होना, पेट में दर्द होना या कब्जी होना या दस्त होना, लैट्रिन में आप मल के साथ खून आना, रात के समय में दस्त, आपके सोने के बाद आपको उठना पड़ रहा है दस्त जाने के लिए, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाथ में कैंसर की या फिर IBD की, वज़न कम हो रहा है आपका, आपको बुखार आ रहा है, आपका खून कम हो रहा है, तो ऐसी जब ऐसी रेड फ्लैग साइंस अगर हैं आपको और पहली बार आपको दिक्कत हो रही तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिलकर सही निदान और उपचार लेना चाहिए।
0: जी, तो डॉक्टर साहब ये काफ़ी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं और बेहतरीन तरीके से तब और आएंगी जब कुछ इनसे जुड़े सवाल भी आएंगे। तो सभी श्रोताओं को मैं कहूँगा कि आप अगर डॉक्टर आदित्य व्यास से कुछ आंत और लीवर के बारे में कोई ऐसी बात पूछना चाहें जो कि आप फेस कर रहे हैं या आपके कोई परिवार में फेस कर रहे हैं, तो आप हमें कॉल लगाइए 2200-800 पर, और आपके मन में कोई सवाल हो पूछने का इस बीमारी से संबंधित, सिर्फ यही बीमारी है, इससे संबंधित किसी बात को पूछें और फिर आपका वो निदान है जो उपचार है वो यहाँ पर बताएंगे। अभी डॉक्टर साहब एक गाना सुन लेते हैं और तब तक हम श्रोताओं का इंतज़ार करते हैं। सुनते रहिए 100.3 FM, अभी ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: 9:44 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.3 FM, हेल्थ इज वेल्थ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जब आंत और लीवर की, और इनकी सारी बातें आपने IBS IBD सब समझाए। इस बीच जब कॉलर से हमने अपने कॉल्स बुलवाए तो बहुत से कॉल आए, जिनमें दो सवाल अभी यहाँ पर पूछने वाले हैं। मुकेश कुमार जी आमेर से पूछ रहे हैं कि अगर लीवर की या आंत की बीमारी है तो उससे क्या BP ज़्यादा रहता है क्या?
2: अगर BP ज़्यादा है और अगर डायबिटीज़ है, मोटापा है, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें लीवर की बीमारी हो सकती है, फैटी लीवर, जो आगे चल के गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ऐसे मरीजों में BP, जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, मोटापा है, उसे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है सर।
1: और विष्णु कुमार जांगिड़ हैं, ये पूछ रहे हैं नाड़ी का फाटक से कि साहब, ये फूड पॉइजन की जो समस्या हो जाती है तो ये कैसे होती है, इसको थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये हमारे शरीर में खाते तो हम नॉर्मल वही चीज़ हैं जो खा रहे होते हैं, पर वो पॉइजन कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है?
2: जो कॉमन भाषा में फूड पॉइजनिंग कहा जाता है
1: जी,
2: ये दूषित खाने या पानी से होता है जिसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस मौजूद हैं। उस बैक्टीरिया वायरस के कारण जो उसके टॉक्सिन हैं, उससे उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब हो सकता है, इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, साफ खाना हो, साफ पानी हो, तो इससे बचा जा सकता है
1: जी। और अविनाश वर्मा पूछ रहे थे कि पेट दर्द के बाद टॉयलेट चला जाता हूँ ना तो मेरे को राहत मिल जाती है, लेकिन ये है कि खाना खाने के बाद पेट थोड़ा सा ऐसा भारीपन सा रहता है, और भारी रहते हुए फिर हल्का दर्द सा ऐसा एहसास रहता है, और फिर ऑफिस में भी परेशान होता हूँ, एक दो बार तो ऑफिस में मुझे जाना पड़ता है
2: जी। इसमें जो आपके लक्षण हैं, इनकी क्या क्या लक्षण हैं, कितनी अवधि से आपको ये दिक्कत है, और इसके साथ जो हमने बात की थी रेड फ्लैग साइंस की, वो मौजूद हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हुए कोई जांच की ज़रूरत है या नहीं, उसके बाद आपको बताया जा सकता है कि क्या बीमारी है और उसके अनुसार आपका उपचार हो सकता है
1: जी। तो जैसे अभी बाकी श्रोताओं ने पूछे हैं, ऐसे कई और भी श्रोता हैं जो एक के बाद एक फ़ोन लाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और अपनी पेट से संबंधित जो परेशानी है, वो गैस को लेकर, एसिडिटी को लेकर, या आंतों को लेकर, लीवर को लेकर, जो सोच रहे हैं, जो मन में है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। तो आप जो भी पूछना चाहें ना, तो एक फ़ोन नंबर है FM का हमारे यहाँ, 2200-800, फ़ोन लगाओ और आप डॉक्टर आदित्य व्यास से सवाल पूछ सकते हैं।

0: 9:48 हो रहे हैं और एक के बाद एक बहुत सारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, कई सुन पा रहे हैं और कई खुद लाइन पर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, कौन बोल रहे हैं? हेलो।
1: हेलो, हाँ मैं कैलाश गोयल बोल रहा हूँ
0: जी, बोलिए।
1: से और मेरे कैंसर हो गया था सर, कोलोनोस्कोपी का मेरा ऑपरेशन हुआ था और एक साल पहले मैं सर वापस तो ब्लड आने लग गया, तो मैंने कोलोनोस्कोपी कराई थी तो कैंसर तो उसमें था नहीं, तो उन्होंने कहा कि सर इसके आप टेस्ट करते रहो, तो कौन से टेस्ट हमें और करने चाहिए?
2: नमस्ते कैलाश जी, जो आपने बताया आपको पहले आँत, बड़ी आँत का कैंसर हो चुका है और
1: सर
2: अगर लैटरन में फिर से खून आ रहा है तो
1: नहीं आ रहा था सर, अब तो नहीं आया, पहले मेरे आया था एक साल पहले, तो मैंने वो टेस्ट कराए थे सारे, तो उसमें कैंसर तो था नहीं, लेकिन अब मुझे क्या क्या रखने चाहिए उसके लिए? कभी कभी मेरे दर्द हो जाता है उसमें।
2: जी आपको इस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ, बड़ी आँत में कहाँ का कैंसर था और अभी कोई लक्षण है क्या। उसके बाद भी अब जो पेट के विशेषज्ञ या कैंसर के विशेषज्ञ से लगातार आपको मॉनिटरिंग तो करवानी पड़ेगी और उसमें कुछ खून की जांच होती हैं और जो कोलोनोस्कोपी है वो भी कुछ समय बाद आपको हर करानी पड़ती है
0: जी।
1: तो वो तो करा ली, मैंने कोलोस्कोपी तो पहले करा ली थी एक साल पहले, तो उसमें कुछ निकला नहीं था मेरे।
2: उसके बाद भी आपको फिर से दिखाना पड़ेगा, खून की जांचें भी होती हैं, कोलोनोस्कोपी कुछ
1: अच्छा।
2: समय बाद फिर से रिपीट की जाती है
0: जी।
1: अच्छा।
0: और समय समय पर टेस्ट करवाने चाहिए।
1: सर मेरे उन्होंने रेक्टम भी निकाल दिया था और वो स्टोमा बैग लगा रखा है।
2: अच्छा,
1: उससे कोई दिक्कत तो नहीं है?
2: नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं।
1: ठीक है डॉक्टर।
0: तो ऐसे ही आप भी फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। इस बीच डॉक्टर साहब, एक कॉमन जो आजकल बहुत सारी जगह पर देखी जाती है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ हो जाना, तो क्या एसिडिटी का डायबिटीज़ से कोई कनेक्शन है? ये सवाल एक बनता है।
2: जी हाँ, अगर डायबिटीज़ कितने समय से है, कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण जो नसें हैं पेट की एवं आँत की, वो नसें खराब होना शुरू होती हैं। अगर और एसिडिटी की जो बीमारी है, ये इसे डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस एक बीमारी है, उसमें जिसकी जो चाल है पेट की वो कम हो जाती है, उसके कारण पेट भारी होना, जी घबराना या भूख न लगना ऐसा हो सकता है। और बड़ी छोटी आँत को भी यह प्रभाव कर सकती है कितने समय से डायबिटीज़ है उसके अनुसार।
0: जी अभी कॉलर ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
3: विद्या बात कर रही हूँ। नमस्ते सर।
2: नमस्ते विद्या जी।
3: सर मुझे पूछना था, मैं जैसे कहीं पे भी जाती हूँ या ट्रैवल करती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो उसकी क्या हो सकती है, मतलब किस वजह से बनती होगी वो?
2: गैस का कारण आपको अगर कभी कभी होता है, ट्रैवलिंग के दौरान ही होता है, तो आपका जो खाना पीना है, आप कहाँ खा रहे हैं, या
3: मैं घर से ही खाती हूँ सर,
2: जो जंक फूड, हाँ जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए, और जो आप लगातार बैठे रहते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से बीमारी है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात आई तो एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो वो कोल्ड ड्रिंक मिला कर पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक बुला कर पी लेते हैं, जो एक कोल्ड ड्रिंक मना है लेकिन उस पर भी, तो वो अंदर क्या, उसका क्या रिएक्शन होता होगा बॉडी में?
2: जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होती हैं, जो इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब होता है, ये फर्मेंटेबल फूड, फॉडमैप बोलते हैं इसे, जो फर्मेंटेबल फूड होते हैं अधिक मात्रा में, शुगर, ग्लूकोज, लैक्टोज, इससे आगे चल के पेट में गैस बनना और ये दिक्कत हो सकती है। एक बार तो मरीज को डकार आ जाती है, लेकिन ये आगे गैस बना सकते हैं छोटी आँत में, बड़ी आँत में,
0: तो ये घातक ही है, इसको नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। सही तरीके से पाचन तंत्र को सही रखना, कि वही खाएं और बराबर पच जाए और वो सही फैटी लीवर भी ना हो, तो इसमें क्या कोई चीज़ें हैं जो कि साथ में, जैसे कहते हैं कि एक खाना खाने के बाद सौंफ खा ली जाए ना तो खाना जल्दी पच जाता है या वो पाचन में सहायता करता है, तो ये किस तरीके से मेडिकल इसको किस तरीके से देखता है?
2: जी अगर फैटी लीवर की बात कर रहे हैं तो फैटी लीवर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप कम से कम घी जो तेल है, ज़्यादा तेल मसाले का उपयोग ना करें, घर का खाना खाएं, जंक फूड है जो हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं वो अधिक मतलब अवॉइड करें, अधिक ना पिएं और अपना व्यायाम करते रहें, जो आपका ओबेसिटी बोलते हैं, खासकर जो सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट के तरफ जो चर्बी है वह नहीं रहनी चाहिए।
0: एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
4: अरुण जी, आपको और डॉक्टर साहब को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर से।
0: जी प्रकाश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था कि मेरी उम्र है ना 56 साल है और वैसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पिछले 10-12 साल से ना मुझे कब्ज रहती है। कभी कभी तो मतलब अपने आप ही ठीक भी हो जाती है, बाकी कभी कभी तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, वह ब्लाइंड आदमी हूँ, घर पे रहता हूँ, घर का सादा भोजन बिल्कुल, घर पे भी ज्यादा तली भुनी चीज नहीं खाता हूँ मैं।
2: हाँ जी।
4: तो और जब कब्ज ज्यादा हो जाती है तो फिर गैसिंग बढ़ती है, नहीं तो गैस नहीं बनती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना, इस क्या करें।
2: नमस्ते प्रकाश जी, जैसा आपने बताया कि आपकी उम्र 56 साल है और आपको कब्ज़ की दिक्कत है काफ़ी समय से, तो और इसमें जो बाकी के लक्षण हैं, कब्ज़ भी अलग अलग तरीके का होता है, तो आपको ज़रूर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एक बार मिल के सही लक्षण, सही निदान और शारीरिक परीक्षण के बाद ही आपको कोई दवाई उपचार लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव रहेगा आपके लिए।
0: जी, और एक कॉलर है। हेलो
5: नमस्कार, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। मेरा निवेदन है कि जो आज की लाइफ स्टाइल है, रात को देर तक जगते रहना, मोबाइल देखकर या टीवी देख के खाना खाना, आजकल छोटे बच्चों को भी मोबाइल दिखा के खाना खिलाना, ये कितना घातक हो सकता है। और कई बार खाली पेट रहना, मतलब इंटरवल दो फूट के बीच में ज्यादा रहना, ये कितना घातक है। पानी नहीं पीना, ये बताइए प्लीज।
0: अपना नाम भी बताइए सर अपना।
5: प्रमोद जयपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी प्रमोद जी, ठीक है।
2: नमस्ते प्रमोद जी, जो आपने बताया सही समय पे खाना नहीं खाना और मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खाना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, सही जीवन शैली तो नहीं है। सही जीवन शैली के लिए आपको सही समय पर खाना खाना, घर का खाना खाना और कम घी तेल जंक फूड को अवॉइड करना और रेगुलर व्यायाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक सीमा में टीवी और फ़ोन देखा जा सकता है, उसके अगर अधिक आप देख रहे हैं तो उसका नुकसान ही है।
0: जी, और ये चीज़ें तो जैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों को बिना मोबाइल दिखाए वो उनके खाना नहीं उतरता है इस तरीके से। वो एक्चुअली क्या है, ये भी देखा जाता है कि अपने आप की थोड़ी सी काम से दूरी बनाने के लिए बच्चा परेशान न करे मोबाइल पकड़ा, बाद में वो एक तरीके से बहुत पॉइजन हो जाता है लाइफ के लिए मोबाइल फ़ोन, तो उसका सही से उपयोग होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे लोगों ने सवाल पूछे, एक बात यहीं पर आकर अटकती है कि हमारा पेट जो है अगर वह स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी बीमारियां बाद में पेट से ही पनपती हैं। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कुछ घरेलू उपायों के साथ साथ जो डॉक्टर की सलाह है ये सब लेनी चाहिए, लेकिन आप जब आए हैं तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी श्रोता सुनने वाले, कि क्या चीज़ें हम करें कि हमको बिल्कुल सही रहे लाइफ, पेट आराम से पच जाए, सब कुछ अच्छा रहे।
2: जी हाँ बिल्कुल, जो ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इसके लिए लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है। सही समय पर खाना खाना, घी तेल और मसाले कम से कम उपयोग लेना, बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी चाय कॉफ़ी नहीं पीने चाहिए, और व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, सही मात्रा में पानी पीना वह भी बहुत ज़रूरी है, खाने के साथ साथ सलाद लेना जिससे थोड़ी फाइबर डाइट आपके जाए, तो आपको कब्ज़ और गैस से मुक्ति मिल सकती है। और जो हम बात कर रहे थे, इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे रेड फ्लैग साइन, जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे 45 से 50 की उम्र के बाद अचानक से आपको अगर नई बीमारी शुरू होती है, पेट में दर्द, कब्जी, या फिर आपके खून की कमी होती है, दस्त लग रहे हैं लगातार, रात में दस्त लग रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है आपके परिवार में आंत के कैंसर की या फिर IBD की, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: जी, एक छोटा सा सवाल एक पूछ लेता हूँ। दूध, कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कितना सही कितना गलत, और कोई अगर रोज़ाना दही खाता है तो वो सही है क्या?
2: जी हाँ, दही बिल्कुल सेफ़ है और दूध भी ज़्यादातर लोगों में सेफ़ है। जो कुछ लोगों में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनको अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर से परामर्श करके ही अगर अगर वो डायग्नोज होता है कि निदान होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का, तो वो उनके छोड़ने में उनका फ़ायदा रहता है।
0: बहुत ही अच्छी बातें हुई और इतनी सारी जानकारियां आज मिली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदित्य व्यास, आप यहाँ पर आए और सबको उनके पेट से संबंधित इतनी अच्छे से बातें समझाइए। चलते चलते एक मैसेज सबके लिए क्या होगा?
2: संदेश सभी के लिए यही रहेगा कि सही जीवन शैली अपनाएं, जिसमें सही खाना पीना, व्यायाम, मेडिटेशन और जो खराब आदतें हैं जैसे शराब या स्मोकिंग है जो, उससे बचें। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है जैसे मैंने पहले बताया, तो आप ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लें और सही निदान और उपचार लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू सो मच सर।
2: धन्यवाद।
6: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के प्रायोजक थे आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
7: धूल, धुआं, पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
8: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
7: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
8: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
9: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
10: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
9: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
10: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
11: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
12: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
13: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
14: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
13: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
14: सच?
13: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
14: समझ गया।
15: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट।
16: राहुल, अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ।
15: पापा का कहना,
17: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
15: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना।
18: क्या यार, इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ, ठूसो।
15: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना।
19: अम्मू मत बना, ले बाइक की चाबी, जाजी ले अपनी जिंदगी।
15: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
20: एक बात बताओ यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना? पक्का पक्का ना?
15: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है। ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
21: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

10:06 और 5 सेकंड हो रहे हैं। मैं उतर आप सुन रहे हैं 100.3 FM। और ये गाना हमने सुन लिया, ये थोड़ा सा बारिश वाला है, लेकिन बारिश हो जाए तो बात ही कुछ और हो। अच्छा, मैं बात करूँगा अब उनकी, जिन शब्दों को हम सीखे तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई नया शब्द सीखना चाहिए, इसीलिए हम लफ्ज़ों की पाठशाला लेकर आते हैं, है ना। तो आज क्या होगी, उनमें कौन कौन से शब्द आएंगे, उनसे पहले कुछ एक गीत प्ले करता हूँ और उस गीत से निकलेंगे वो शब्द। कौन सा शब्द है ये देखने वाली बात है। चलो गाना सुनते हैं।

दस बजकर पूरे पूरे 10 मिनट हुए, एंजल टाइम हो गया है। मैं हूँ तरुण और अब हम बात करें इसमें गाने में क्या लाइन थी, सुकून मिला। तो सुकून भी बोलते हैं, सुकून भी बोलते हैं, और ये जो उर्दू का लफ्ज़ है ये हमें सीखना है। तो सुकून आप बोलते हैं क्या कभी अपने कोई भी बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलें कि शांति बनाए रखिए, शांत रहना, सुकून पाना, शांति से बैठूंगा, सुकून से बैठूंगा, बात एक ही है। तो इन शब्दों को भी प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके मतलब हर किसी के पर्यायवाची हैं अलग अलग, जो कि हमें सीखने चाहिए। जैसे नील गगन अंबर जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे ही अब्र हम पढ़ें तो फिर वो बादल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग शब्दों को जब हम सीखते हैं तो हमारी जो आम बोलचाल की भाषा में और कहते हैं कि उसमें एक अमीरियत आ जाती है, उसमें और एक अच्छा सा लगने लग जाता है, सबको वजन आने लग जाता है चीज़ों में। तो सुकून वर्ड जो है इसको लेकर आप क्या कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, आप कुछ इसके आसपास के जैसे शब्द हैं उनको जोड़कर क्या बना सकते हैं, तो 2-3 लाइन बनाइए ना, फेसबुक पर भेजिए 100.3 FM पर, और फिर आगे अगले शब्द की बात करूँगा, फिर उसके साथ भी इसको मिक्स करते जाएंगे। लेकिन पहला शब्द हो गया सुकून, और अब अगला कौन सा है बस थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन अभी एक जुनून वाला गाना सुन लेते हैं।

अपनी तो पाठशाला लफ्जों की है, पाठशाला 100.3 एफएम पर मैं हूँ तरुण, 10:17 हो रहे हैं और हमने जुनून की भी बात कर ली। देखिए अभी एक शब्द आ गया जुनून, जुनून मतलब दीवानगी, दीवानगी भी बिल्कुल एक्सट्रीम वाली, जिसको हम धुन की कहते हैं, धुन की लागे, एक धुन लग गई, एक जुनून शुरू हो गया, और लगन भी इसे कहते हैं। तो लगन, जुनून, दीवानगी, धुन सब एक है। तो अब अगला शब्द हमको मिल गया, पिछला क्या था, सुकून था। सुकून और जुनून एक सा लगता ना बोलने में, सुकून जुनून, लेकिन वहाँ मन की शांति थी और यहाँ दीवानगी है, यानी शांति नहीं रहने वाली। दीवानगी में तो फिर आज इंसान शांत कहाँ बैठने वाला है। अब देखिए जैसे हमने बात की थी सुकून की, तो सुबह की ताज़ी हवा जो है वो एक अलग ही सुकून देती है, लेकिन सुबह जो मैं रनिंग पे जाता हूँ वो मेरा जुनून है। तो अब ये सुबह दोनों ही शब्दों के साथ में जुड़ गई। और अगर हम कहें कि माँ की आवाज़ सुनते ही दिल को बड़ा सुकून मिलता है, और सुबह सुबह जब मैं सूरज को देखता हूँ तो उसको देखकर ही मुझे बड़ा जुनून मिलता है कि सुबह ये निकलता है और शाम तक बिल्कुल कंटिन्यूस अपना काम करता रहता है, तो वैसे ही मैं भी अपना एक जुनून रखूँ, एक लगन रखूँ, तब अपना कोई भी लक्ष्य पा सकूँ। तो ये दो शब्द आप अपनी इसमें ऐड कर लें आज लफ्ज़ों की पाठशाला में, कि जुनून और सुकून। अब इनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला शब्द कौन सा है वो हम लेते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो मुकम्मल मींस ऐसी बात जो कि पूरी है, कंप्लीट है, संपूर्ण जिसे हम कहते हैं, संपूर्ण हो गया ये कार्य, वैसे ही मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक सेंटेंस बना लें कि मेहनत के बिना कोई भी सपना मुकम्मल नहीं होता, मेहनत के बिना कोई भी सपना मुकम्मल नहीं होता। या यूँ कहें कि परिवार के साथ बिताया हर पल जिंदगी को मुकम्मल बना देता है। तो अब तीसरा शब्द हो गया हमारे पास मुकम्मल। तो सुकून, जुनून और मुकम्मल, अब इन तीन शब्दों को आपके सामने रख दिया है मैंने। आप इनसे बहुत अच्छे अच्छे जो सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको बना के दिखाए, कुछ अपनी लाइफ को लेकर, आज को लेकर कैसे भी उसको बनाइए। और रेडियो पिंक सिटी का फेसबुक पेज है, वहाँ पर आज की जो पोस्ट है उस पर कमेंट में जाकर पोस्ट कर दीजिए, तो वो हम पढ़ेंगे, सबको बताएंगे आपने क्या लिखा, कुछ क्रिएटिव लिखिएगा। और अगर आप फ़ोन के माध्यम से 2200-800 पर कॉल करके इन शब्दों के कुछ ताने बाने को बुनना चाहें, बताना चाहें, तो आपका स्वागत है। सुनते रहिए 100.3 एफएम। और अभी एक और जुनून की बात करते हैं, तू ही जुनून तू ही करार।

0: जी तू ही करार, 10:24:50 हो गए। और करार भी देखो, करार दो जनों के बीच में भी होता है, और यहाँ ये करार शब्द भी है। करार मतलब तू ही जुनून, तू ही करार, मतलब जिसको पाकर दिल को खुशी मिले। करार आए, दिल का करार खो गया है। ये गाना भी सुना, तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास। तो ये जो शब्द है ना, ये हमें ढालने चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको 3 शब्द दिए, मुकम्मल, जुनून और सुकून। अब चौथा शब्द दूं, लेकिन उससे पहले मैं देख लूं फेसबुक पर आपने कुछ लिखा क्या। जी हाँ, चलिए, सुशीला दत्ता लिखती हैं कि सफलता पाने का जुनून था, मिली सफलता तो मिला सुकून, अब मुकम्मल हुआ मेरा ख्वाब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको तो कविताएं भी करना चाहिए सुशीला जी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। कौशल कुमार लिखते हैं कि जुनून है आंखों में मंजिल पाने का, रात दिन एक करूं ऐसा इरादा है, मेहनत की राहों में मिले जो सुकून, समझो जिंदगी का सपना मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल ख्वाब नहीं होते सिर्फ सोचने से, सुकून नहीं मिलता तकदीर को कोसने से, जुनून हो मेहनत का पसीना बहाना सीखो, कामयाबी खुद चूमेगी कदम, बस चलते रहना सीखो। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये, और एक भाटिया, हनी भाटिया लिखते हैं, तुझे पाना मेरा जुनून है, और पाकर जो खुशी मिली वो मेरा सुकून है। वाह वाह वाह, तो ऐसे ही आप भी बनाइए ना। क्या बनाना है, बनाया आपने? मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह सुबह। हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद की बात हो जाती है, फिर उसके बाद में आगे लंच की हम सोचने लगते हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ों की पाठशाला में लफ्ज़ों से कुछ बनाया जा रहा है। तो क्या बनाया जा रहा है, देखें तो सही। सुकून, जुनून और मुकम्मल, 3 मिले थे शब्द, इनसे कुछ बना। अब एक शब्द और जोड़ लेते हैं, वो है एहतराम। अब ये शब्द सुना होगा आपने, एक गज़ल रही जगजीत सिंह साहब की, कि हुजूर आपका, आपको भी सलाम करता चलूं इधर से गुजरा था, मतलब आपका भी एहतराम करता चलूं। हाँ, तो ये हम गज़ल भी पक्का सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन इस लफ्ज़ की बात कर लें तो ये चौथा लफ्ज़ जो है वो है एहतराम। इसका मतलब है रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। तो बड़ों का एहतराम करना हमारी संस्कृति की पहचान है, ये एक सेंटेंस बन गया। और अगर यूं कहें कि आज अगर हम एक दूसरे का एहतराम करना सीख जाएं तो बहुत सी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएं। क्या बात है, तो एहतराम। तो ये आप, अगला शब्द हो गया, तो हो गए सुकून, जुनून, मुकम्मल और एहतराम, चारों को लेकर अब क्या बनेगा ये आप देखिए। 2200-8000 ये नंबर है, आप इस पर अपनी जो भी, आपने इसको लेकर कुछ, कई बार हम बहुत क्रिएटिव अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं ना, लिखने का बड़ा शौक है, तो कोई चीज़ को लेकर शेर भी बना सकते हैं आप, शायरी बना सकते हैं, कविता बना सकते हैं, कोई गीत भी लिख सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती है, पर जुनून होना चाहिए। आ गया ना, देखो। तो चलिए, आपका एहतराम करते हुए मैं एक गीत सुनाता हूँ, और वो वही गीत होगा जो कि जगजीत सिंह साहब को याद करती हुई गज़ल है, गीत नहीं है ये, गज़ल है कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ।
1: हुजूर आपका भी एहतराम।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी। JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाय, मैं हूं अमोल पालेकर। लाइफ में जीती है और रहिए खुश, सुनते रहिए तरुण के साथ।

10:43 हो रहे हैं और भूपेंद्र की आवाज़ सुन ली, आहिस्ता आहिस्ता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और यहां पर इन लफ्ज़ों की पाठशाला में जैसे कुछ शब्द आते हैं तो मन में होता है, पता नहीं कि ये सही है कि नहीं है, मैं ज़मीन बोलूं कि ज़मीं बोलूं, तो दोनों ही सही है साहब, आप जो चाहें बोलें, ज़मीं और ज़मीन दोनों ही ठीक है। तो इस गीत में ऐसा हमें, वैसे कहते हैं कि जितने हम गीतकारों के लिखे हुए शेर शायरियाँ पढ़ें भले ही या उनके गीत सुने, तो उनसे भी हम बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं। अब इस गाने में भी बहुत सारे आपको गज़लों में कितने सारे मिल जाते हैं। चलिए अभी शब्दों की पाठशाला में कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने शब्द तैयार किए हैं, तो फेसबुक पर हमारे रेडियो पिंक सिटी का पेज है, वहाँ पर आप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कैसे करना होता है। प्रवीण चौहान ने लिखा है, रेडियो सुनना मेरा जुनून है, समाचार और मधुर गीतों से भरा रेडियो मेरे दिल को सुकून और मेरे दिल का सुकून और मुकम्मल कर देता है। वाह, मतलब अच्छी कोशिश है, गुड। और हनी भाटिया अगेन, अच्छा ये काफ़ी इनको शौक है लिखने का, वेरी गुड। सुकून की तलाश में थे, जुनून की हद तक चले गए, होश जब आया खुद को खो चुके थे, लोगों का एहतराम करने के शौक में खुद को खोते चले गए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं तो ये लिखते हैं अशोक टेलर जाड़ियों के रास्ते से, ये लिखते हैं, शेर के रूप में देते रहना एहतराम अपनी खबर आगे भी। मतलब ये एहतराम को ही कह दिया उन्होंने कि तुम मुझे अपनी खबर देते रहना, मतलब सम्मान को ये कह रहे हैं। वाह सुनील टांक। और सुशीला दत्ता, कामयाबी का जुनून मत कर, सुकून खो देगा मुकम्मल, कर सभी का एहतराम है बंदे। वाह, कामयाबी का जुनून मत कर, सुकून खो देगा मुकम्मल, कर सभी का एहतराम ए बंदे। वाह, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इन्होंने तो यही लाइन लिख दी, प्रीति नंदन अग्रवाल ने, अच्छी बात है। तो आप भी लिखिए ना, बनाइए कुछ शब्दों का ताना बाना, बुनिए। रेडियो पिंक सिटी का पेज है हमारा, आज की पोस्ट है वहाँ पर जाकर कमेंट कर दीजिए, तो फिर आपकी भी जो कमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पढ़ा जाएगा, रेडियो पिंक सिटी पर सब सुनेंगे। और आप 2200800 पर कॉल करके भी बता सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि कॉल कम कर रहे हैं सब लोग, लिखकर बताना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कलम उठा रहे हैं उसकी जगह आजकल कर्सर पे ही टाइपिंग शुरू हो जाती है, तो वो कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, तो अब गाना कौन सा सुने, अब बहुत सारे गाने हैं, कभी ना सुकून आया, हाँ ये भी अच्छा गाना है, कभी ना सुकून आया, सुना है ना आपने, चलिए एक बार और सुनते हैं 100.3।

10:52 हो रहे हैं और मुझे बड़ा प्यार आया कि जब इतने सारे कमेंट आते हैं और जब कुछ क्रिएटिव लिखने की कोशिश की जाती है तो उस बीच बहुत से लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक कमेंट मैं फिर से पढ़ूँ, ये मतलब इन्होंने सेंटेंस तो बहुत सारे बनाए, कुछ कविता के रूप में इन्होंने पेश किया, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो कि मैं भी ये मानता हूँ कि इन्होंने लिखा है कि जब मैं 74 की उम्र में होकर कोशिश कर सकती हूँ तो बच्चों को तो कम से कम एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंक्तियाँ लिखनी ही चाहिए। ये सुशीला दत्ता कहती हैं जी, हमारी लिसनर हैं, और ये बात बिल्कुल सही है सुशीला जी कि जिस तरीके से आजकल बच्चों में लिखने की हैबिट जो है वो कम हो गई है, आजकल जिस तरीके से आजकल टैब्स वगैरह में इनमें जो उनके पेंस होते हैं उसमें वो एक जोर देकर तो लिख नहीं सकते, उसके कारण भी उनकी राइटिंग तो वैसे ही हो जाती है माशाल्लाह। लेकिन जो एक बात आपने बिल्कुल फैक्ट कही कि लिखना चाहिए, तो उसके लिए कागज़ पेन लेकर बाकायदा कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखनी चाहिए, शब्दों को सीखना चाहिए। कहते हैं कि 20 शब्द जो हैं अगर हम रोज़ाना नए अपनी ज़िंदगी में शुमार करें तो बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ 20 तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 ही। जैसे आज जो 4 शब्द थे वो हमने अगर लिए तो सुकून, जुनून, मुकम्मल और एहतराम, इनको ही अगर अपनी भाषा में आज आप जब भी बात करें किसी से तो कहीं कुछ इनको यूज़ करके देखिएगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना इंसान की पहचान जो है वो उसके कपड़ों से नहीं, उसके लफ्ज़ों से होती है, कि वो कितने खूबसूरत तरीके से कुछ कहता है, और कहता है तो उसकी आवाज़ में कितना, मतलब उसकी असेट

कितनी है शब्दों की, कितने उसके पास वर्ड्स हैं जो बोल सकता है। जैसे गीतकार लिखते हैं, गुलजार साहब लिखते हैं, अलग अलग लोग लिखते हैं, जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, बहुत सारे हैं राइटर्स। तो जब वो लिखते हैं तो उनके पास इतने शब्द आते कहाँ से हैं? जैसे तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, अब गुलजार साहब ने लिखा तो किमाम की खुशबू है, ये हम सोच भी सकते हैं क्या? हाँ ये, हाँ ठीक है, पान की खुशबू किसी के मुंह से आ रही तो, लेकिन वो शब्दों को लिखना और उसको एक गीत के माध्यम से पेश करना, ये गीतकार की बात होती है। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना चाहिए, खूबसूरत शब्द होते हैं इनको शामिल करना चाहिए, चाहे किसी भी भाषा का हो, इंग्लिश भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कोई और भाषा के भी कुछ हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना चाओ जाने को कहते हैं, तो ऐसे अलग अलग भाषाओं को यूज़ करना चाहिए, शब्दों को। तो आज बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमने जो रखे, इनको लेकर आपने क्या बनाया है अच्छे से, और आप भेजिएगा तो देखते हैं कौन अच्छे से लिख पाता है। तो अब और एक अच्छा सा सेंटेंस फेसबुक पर बनाकर लिखिए, आपको मैं अगली बार कुछ और शब्दों से मुलाकात करवाऊंगा। तब तक एक शब्द दिए जाता हूँ, रिवायत, इसको आप सर्च कीजिए इसका मतलब क्या होता है, रिवायत है ना, और एक नज़रिया, ये भी आप मतलब बोलचाल की भाषा में जानते हैं हम, लेकिन बोलचाल की भाषा में यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगली बार फिर से हम इस पाठशाला में आएंगे और कुछ नए शब्द लाएंगे, और अभी एक गीत की तरफ चल पड़ते हैं। और गीत कौन सा सुना जाए, नज़रिया से सुन लें, नज़रिया या नज़र, नज़र के सामने जिगर के पास, ऐसा ऐसा सुना जा सकता है ना। तो ये गाने जो हैं आशिकी फ़िल्म के हैं, और इस फिल्म की तो कितनी ही बात करें उतनी कम है, क्योंकि म्यूज़िकल हिट रही थी और बहुत ही बड़ा एल्बम म्यूज़िक को लेकर उस वक्त का, और फिल्म भी। तो चलिए, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। अब देखिए, जिगर नज़र शब्द मिल गए ना, जोड़िए लाइफ में लफ्ज़ों की पाठशाला। दिस इज़ मितारुण, ओनली ऑन 100.3 FM।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: रेडियो गिव्स बर्थ टू अ मिलियन इमेजेस इन अ मिलियन ब्रेन्स। So stay connected to 100.3 FM Radio Pink City. Catch the bandit. Catch the bandit. शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
3: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
2: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज।
4: एक मुलाकात जरूरी है सनम।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात।

0: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
1: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
0: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। बात है,
2: जिंदगी है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो विश्वास है, विश्वास है तो जीत है। हाय, मैं हूँ अमिताभ बच्चन और जिंदगी में जीतना सीखो, सुनते रहो तरुण के साथ।

0: ईमानदार फिल्म का गीत। सुरेश वाडकर की आवाज ईमानदार फिल्म का गीत, लेकिन गीतकार कौन थे? गीतकार प्रकाश मेहरा, जिनकी आज हम बात करेंगे, यानी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम डायरेक्टर्स जो कहे जाते हैं, गोल्डन डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसे मनमोहन देसाई, वैसे प्रकाश मेहरा, इन दोनों ने जितने फिल्में भारतीय सिनेमा को दी, ऐसे ऐसी एक 80s 90s का जो दौर था, 70s के टाइम से जो फिल्में हम देखते चले आए और आज भी यादगार, ऐसे ऐसे डायलॉग डिलीवरी और ऐसे ऐसे कहानी जो पेश की गई वो कमाल की, मनोरंजन ऐसा जो आज भी याद आता है, यादगार संगीत ऐसा जो हमेशा दिलों में बसा है, मजबूत किरदार ऐसे जो आज भी याद आते हैं। तो इन सब किरदारों को लेकर, इन सबको लेकर बनाने वाला एक निर्देशक निर्माता जो होता है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। प्रकाश मेहरा साहब के उस संघर्ष की बात करेंगे आज सुनहरी सौगात में, जहां पर कैसे ये सुनहरे पन्नों पर इनका नाम दर्ज हो गया और एक लड़का किस तरीके से बिना माता पिता की मतलब छत्र छाया के कैसे वो अकेला चल पड़ा था, कैसे मुंबई पहुँच गया और क्या हुआ, ये पूरी कहानी है प्रकाश मेहरा की। इस कहानी में वो सब चीज़ें हैं जहाँ मुकद्दर का सिकंदर भी बनने की बात है, उस कहानी में ये भी है कि कोई लावारिस किस तरीके से रह जाता है, उस कहानी में ये भी है कि कोई नमक का हलाल कैसे बनता है, उस कहानी में सब कुछ है। तो आज इस मुकद्दर के सिकंदर डायरेक्टर की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे, नाम प्रकाश मेहरा और 100.3 FM पर। सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
1: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
0: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

और मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक।

तेरे हैं हम तेरे। 11:14 और 10 सेकंड हो रहे हैं। मैं हूं तरुण। सुनहरी सौगात में आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा साहब की, जो कि निर्माता निर्देशक तो रहे ही, लेकिन जो अभी जैसे आपने गीत सुना ये ओ दिलबर जानिए, ये भी उन्होंने लिखा था, पता है आपको। हसीना मान जाएगी फिल्म का निर्देशन भी किया था, लेकिन ये गाना

भी इनका ही लिखा हुआ है। और एक 1965 में पूर्णिमा फिल्म आई थी, वहाँ से इनकी जब शुरुआत हुई थी, जब ऐसे काम कर रहे थे, गीत जो था वहाँ पर इनका पहला आया था। और वो गीत था फूफा जी जरा सच सच कहो। कमल बारोट और महमूद पर ये फिल्माया गया था और उन्होंने ही ये गाना गाया था दोनों ने। तो यहाँ से इनकी लेखनी की शुरुआत हुई थी, पर रियल में निर्माता निर्देशक बनना तो बाद की बात थी। अब कहानी को रिवर्स लेकर चलता हूँ, फ्लैशबैक में, कैसे ये बने प्रकाश मेहरा। भाई 13 जुलाई सन 1939 की बात है, बिजनौर में इनका जन्म हो गया था। और अब जन्म के बाद में थोड़े दिनों बाद माताजी जो है इस दुनिया को छोड़ गईं, फिर पिताजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब ऐसे में एक बच्चा जिसके न पिताजी हैं उसके साथ में, न माँ रही, तो वो कैसे अकेलेपन में रहा होगा ये आप सोचिए। लेकिन उसने अपने अकेलेपन को बिल्कुल भी छुपा नहीं दिया, बाद में हम सबको दिखाया भी, बताऊंगा कैसे कैसे दिखाया। तो जब उस बच्चे के दिमाग पर, उसकी मनस्थिति पर क्या वो छाप छूटी होगी उस वक्त, अब क्या करें, कोई संभालने वाला नहीं, छोटा सा बच्चा कौन संभाले। तो आंटी थी दिल्ली में, उन्होंने इनको पनाह दे दी कि चलो अब माता पिता तो रहे नहीं, तो चलो पिताजी मतलब हैं लेकिन वो छोड़ गए, संन्यास ले लिया, उन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे पेरेंट्स कभी नहीं होने चाहिए। तो उनके साथ में ऐसी दिक्कत हुई, अब जो आंटी थी उन्होंने संभालना शुरू किया। लेकिन शुरुआती ज़िंदगी में ही ऐसा बचपन थोड़ा सा दिल पर ऐसा आघात लगता है ना कि चलो छोटा बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा, पर रियल में जो देख रहा है सामने वो तो दिमाग पर छप ही जाता है। तो वो छप चुका था और उसको अपनी कलम के माध्यम से ये छोटा सा बच्चा लिखने लगा था। दिल्ली में रहते हुए 11 साल की उम्र थी, पढ़ाई भी चल रही थी, अब आंटी पढ़वा भी रही थी, पढ़ भी रहे थे, लेकिन अपना बेटा तो अपना होता है देखो, और बाकी किसी और का हो तो फिर वो किस तरीके से, पुरानी पुरानी फिल्मों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो अपना खून वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर प्रकाश मेहरा तो अपने पढ़ाई भी कर रहे थे और लिखने का शौक रखने लगे। 11 साल की सिर्फ उम्र थी, ज़्यादा नहीं, बस मन उचट गया और चले गए बम्बई। बोले यहाँ पर फिल्में बनती है, यहाँ मैं लिखूँगा तो शायद कोई, अब 11 साल की उम्र में कोई बच्चा बच्चे को कोई क्या काम देगा। लेकिन उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब कितने सालों पुरानी, 1939 में जन्म हुआ और बाद में ये 1951 के आसपास की बात। तो बच्चा पहुँच गया, नाम प्रकाश मेहरा। अब एकदम से कोई अनजाना शहर, लेकिन ये तो था कि जब परिवार ने ही अनजाना कर दिया, माता पिता ने ही, तो फिर पूरी दुनिया ही, अब जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, ये भी नहीं कि फिल्म का गीत है। तो वो दर्द जो है ना, इसी तरीके से निकाले थे इन्होंने अमिताभ बच्चन के माध्यम से। तो कैसे वो फिल्म बनाने तक पहुंच गए और कैसे वो पहला गीत मिला, ये सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कुंजम कुंजम। और अभी हमने अगला गाना सुनना है, तो कौन सा सुने, मैं तेरी हो गई, चलिए लता जी की आवाज़ में।

कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही। 11:24:22 हो रहे हैं। मैं हूं तरुण, सुनहरी सौगात है ये, और हम गीतों की सौगात आपके साथ

सुन रहे हैं उस वक्त के, और लेकिन उन फिल्मों के गीत है जहाँ पर गोल्डन डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस लिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़े तो कैसे वो एक गीतकार बनने चल पड़ा 11 साल का बच्चा, और फिर बाद में प्रकाश मेहरा वो बने, लेकिन क्या हुआ होगा? मतलब सोच के ऐसा लगता है ना कि एक दिमाग में कैरिकेचर सा बनता है कि कैसे किया होगा, पर किया है साहब, इसीलिए तो स्वर्णिम पन्नों में नाम दर्ज है। उस छोटे से बच्चे में इतनी समझ आ गई थी कि मुझे सीधा तो कोई गीतकार बना नहीं देगा, कोई नहीं बनाएगा, मुझे कहीं ना ऐसे कहीं से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स के चक्कर ये लगाने लगे धीरे धीरे धीरे धीरे। पहले तो सोचते थे कि हाँ कोई सीधा काम दे देगा, पर इनको समझ में आ गया नहीं, ये बॉस ऐसे दाल नहीं गलने वाली है। तो इन्होंने सोचा कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कुछ भी काम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब ये है जुनून दीवानगी की, कुछ भी मिल जाए, बनना तो गीतकार है। तो ये सीधे पहुंचते थे अलग अलग जगह। तो एक कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह, तो ये राह बन गई इनकी, बार बार अलग अलग स्टूडियो जाने लगे, तो कहीं पर एक नौकरी मिल गई। और वो पहली नौकरी क्या थी? वो थी सिर्फ एक असिस्टेंट की, जो कि स्टूडियो में इधर से उधर कैमरा रखवाने में काम करते हैं। 30 रुपये महीने की ये नौकरी थी, और काम बस यही कि कैमरा डिपार्टमेंट में जाना है आपको, हेल्प करवानी है, बट हाँ ये है कि सामान देना है, कैमरे को हाथ नहीं लगाना है, डू नॉट टच, ऐसी बात, बाकी छोटे मोटे जो काम दिए जाते। तो इन्होंने पहली बार बस दूर से कैमरा देखा, और कैमरा देखते ही पहला प्यार वाली बात हो गई कि ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे तो ये इसके पास जाना चाहिए। तो वो कैमरे से प्रेम वहाँ हो गया। अब धीरे धीरे धीरे धीरे ये अपना काम कर रहे थे, दूर से देख रहे थे, पर वो एक यूनिवर्स का एक लॉजिक है ना कि भाई किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो कैमरे को इनको टच करने का मौका भी आगे मिल गया, और कैमरामैन असिस्टेंट बन गए फिर ये। अब ये भी देखते थे कैसे शूट करते हैं, कैमरामैन क्या कर रहा है, सिनेमाटोग्राफी क्या होती है। धीरे धीरे सीखने का सिलसिला देख कर ही जारी रहा, कि मतलब देख देख के प्रैक्टिकली ये सीखते गए। और अब अकेले रहना जो इनका मुंबई में, वो बिल्कुल सेट हो गया था, नौकरी भी मिल चुकी थी, तो दिल्ली जाने का कोई सवाल बनता नहीं था आंटी के पास में, बस नहीं गए, रुक गए कि मुझे बनना है कुछ। और फिर 1950 आया तो इनको जो प्रोडक्शन कंट्रोलर की नौकरी भी मिल गई आगे, मतलब 1950 के बाद में। और फिर धीरे धीरे करते करते 1965 में जो ये फिल्म मैंने बताया ना पूर्णिमा, इसके अंदर इनको गाना लिखने का मौका मिल गया, जो सोच कर आए थे कि मुझे गाना लिखना है, पर रास्ता कैसे आना था। अब वो उस गीतकार बनने के रास्ते में कैमरे से प्यार हो गया, वो बात अलग थी, पर गाना लिखने का मौका मिल गया। इसके बाद में तो 3 साल और बीते, मंगत, कुमार मंगत ने फिल्म बनाना चाहा, और वहाँ पे डायरेक्टर के तौर पर सीधा ही आ जाइए आप, क्योंकि ये था एक डायरेक्टर को चुनने का मौका। उस वक्त हसीना मान जाएगी फिल्म थी 1968 की, और उसमें इनको निर्देशक के तौर पर मौका मिल गया, क्योंकि कैमरामैन जो होता है अपने आप में वो एक डायरेक्टर टाइप ही होता है, क्योंकि उस वो सारी फिल्म शूट कर रहा होता है, और डायरेक्टर भी यही थॉट लेके चलता है कि कैमरे में मुझे क्या दिखाना है या क्या छिपाना है, क्या सीक्वेंस है, क्या सिचुएशन है। वो चीज़ इन्होंने ऐसी कमाल की इस फिल्म के अंदर, फिर उसके बाद में ये बन गए डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर जो थे, इनका गीत हमने सुन लिया अभी हसीना मान जाएगी, लेकिन आगे इनके रास्ते और बने। लेकिन गाना कौन सा सुने अब? गाना उसका सुनते हैं जिसने इन्हें बड़ा स्टार बना दिया, और एक और व्यक्ति था जिसको सदी का सितारा बना दिया, पहचान गया बच्चन साहब को। तो गाना वही सुनते हैं, फिर इसकी बात करेंगे।

0: 11:34 और यारी पर बहुत प्यारा गाना है, जंजीर फिल्म का गीत है ये। और ये फिल्म किनकी? ये फिल्म प्रकाश मेहरा साहब की, लेकिन निर्देशन के साथ में निर्माण की भी। अब इससे पीछे रिवर्स जाऊं तो देखिए 1968 में हसीना मान जाएगी शशि कपूर के साथ में, और उसके बाद 1971 में एक और फिल्म आई थी मेला, मेला में भी निर्देशन किया था फिरोज खान, संजय खान, मुमताज की फिल्म थी। और उसके बाद समाधि 1972 में आई तो उसमें धर्मेंद्र और आशा पारेख थे। तो ऐसे सब बड़े बड़े कलाकारों को ये निर्देशित करते हुए चले आए, शुरुआत में जैसे शुरू हुए पूर्णिमा से किस तरीके से। अब एक और शुरुआत बहुत पहले की पिक्चर में की बात करूं तो प्रोफेसर एक फिल्म थी 1962 की, वहां पर इन्होंने एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम किया था, कहीं उसका क्रेडिट नहीं है लेकिन उस वक्त से ये काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे धीरे धीरे डायरेक्टर भी बन गए, लेकिन अब 1973 आया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं डायरेक्टर हूँ, इतने बारीकी से बचपन से देख रहा हूँ सबको कि फिल्में भी बनती है, ये भी समझ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ही बना दूँ एक फिल्म। तो इन्होंने फिल्म बनाने का निश्चय किया और कोशिश की थी कि इस फिल्म में राजकुमार साहब को लिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही सब के मना करने के बाद में फिर बताया गया इन्हें कि एक लड़का है, मतलब स्मार्ट दिखता है, बॉम्बे टू गोवा में आया था, लेकिन वो इस फिल्म में हीरो हो तो अच्छा है। तो एंग्री यंग मैन के रूप में प्रकाश मेहरा ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन पर ट्रस्ट करते हुए इन्हें लॉन्च किया उस फिल्म में उस तरीके से, एक एंग्री यंग मैन के तौर पर। क्योंकि इससे पहले क्या था, वो दौर जो था ना, जैसे हम ये फिल्में देख रहे हैं समाधि, मेला वगैरह, आन बान, ये फिल्में ज़्यादातर रोमांटिक मूवीज़ थी। मतलब ठीक है एक्शन सीक्वेंस थोड़े बहुत होते थे, वो ठीक बात है, पर कम्प्लीटली अगर हम एक्शन की बात करें और एक ऐसा नायक पर्दे पर उतारने की बात करें जो कि गुस्से में है और एक अन्याय के खिलाफ लड़ लेता है, ऐसे पहले क्या होता था, जितने भी थे जैसे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र वगैरह, ये सब उस वक्त तक ऐसा दौर था कि ज़्यादातर शांत फिल्में थी, लेकिन उग्रता दिखाई एक नायक के माध्यम से वो प्रकाश मेहरा ने। शायद ये भी रहा होगा कि इनके बचपन की जो एक अंदर घुटन थी उसको एक तरीके से खोलने का तरीका, कि जैसे वो जो डायलॉग था अमिताभ बच्चन साहब का,
1: तुम्हारा नाम शेर खान है?
2: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
1: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
0: ये देखिए ये डायलॉग डिलीवरी, हाँ कमाल का, जो ये कर सकते थे प्रकाश मेहरा ही कर सकते थे। उन्होंने जिस तरीके से हिंदी सिनेमा के इतिहास को उस वक्त बदल दिया, और फिर ये फिल्म तो आप एक स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। अमिताभ बच्चन साहब को फिर इसके बाद में एक प्रकाश मेहरा का यूँ साथ मिला कि सारी ही फिल्में आगे की जितनी भी इनके साथ की है वो सुपर डुपर हिट रही, और अमिताभ बच्चन के माध्यम से ही प्रकाश मेहरा ने अपने उस बचपन के दर्द को बताया कि कैसे कैसे वो फील करते होंगे। तो ऐसा ही एक दर्द लावारिस का सुनते हैं। लावारिस फिल्म भी इन्हीं की फिल्म रही, अमिताभ बच्चन को लेकर बनाई, निर्माण भी इन्हीं का, निर्देशन भी इन्हीं का, और इन्होंने उस गाने के माध्यम से ये बता दिया कि साहब मैं अकेला था, पर मैं अकेला नहीं, मेरे ऊपर ऊपर वाला था।
3: जिसका कोई नहीं

0: बिल्कुल सही लाइंस जो है वो अनजान ने लिखी। और ये जो एक फिल्मों का दौर है ना, ये प्रकाश मेहरा वाला, ये बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला है। अब हम उस वक्त की फिल्में देखें तो पूरा मतलब मनोरंजन मसाला भी होता था, पर कहीं ना कहीं एक टीस, एक दर्द, चाहे वो अमिताभ बच्चन का गाना हम देखें कि कब के बिछड़े हुए आज हम कहाँ आके मिले, या फिर ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, जिंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी, या ऐसे ही जो गीत हैं वो बता रहे होते हैं कि। और दूसरा जो हमने बताया था कि ईमानदार फिल्म का गीत था, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। अब शायद अपने मम्मी को सोचकर प्रकाश मेहरा ने सोचा होगा कि उस वक्त छोटेपन में जो गाना लिखा होगा, सोचा होगा। अब चीज़ें बदलती जाती हैं, बाद में लाइफ में और भी लोग ऐड होते हैं, लेकिन जो शुरुआती जो बातें होती है ना, जो बचपन में हुई होती है, वो हमेशा याद रहती। तो उन्होंने ऐसे प्रस्तुत की। अब ऐसी ही जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने यादगार फिल्में दी अमिताभ बच्चन के साथ में। हेरा फेरी भी रही, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म रही जिसमें किस तरीके से वो सिकंदर बनता है, लावारिस फिल्म रही, नमक हलाल रही, शराबी रही, ऐसी बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई और पेश की, मतलब निर्माण भी और निर्देशन भी, ये बात थी। तो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की ये जोड़ी रही ना, ये हिंदी सिनेमा की सबसे सफल एक अभिनेता और निर्माता निर्देशक की जोड़ी में से गिनी जाती है। दोनों ने मिलकर तकरीबन 7 के आसपास फिल्में करी, लेकिन इन दोनों में रिश्ता भी ऐसा था कि बहुत प्यार से, ऐसा नहीं कि भाई प्रोफेशनली मिलना है कि ये डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, नहीं, दोस्ती भी रही। इसीलिए वो दोस्ती फिल्मों में निकल कर आई, कहाँ वो हाथ में लग जाना उनके, और ठीक है उनका अमिताभ बच्चन का इन्हें कहना प्रकाश मेहरा को कि शराबी फिल्म मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे हाथ में वो जला हुआ सा था, तो बोले कि ठीक है आप अपने जेब में हाथ रख के रखिएगा, ये आपका स्टाइल होगा। मतलब अमिताभ बच्चन को इस तरीके से पेश करना, जो आज हम देखते हैं कि स्टाइल जेब में हाथ डाल के एक तरफ से टेढ़े होकर हो जाना, वो भी प्रकाश मेहरा साहब ने क्या क्या कमाल किए हैं ना, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अभिनेता अभिनय करता है पर उसके अंदर कुछ भी और एड ऑन और कोई चीज़ें बातें बता देने वाले निर्देशक ही तो होते हैं, वो जो सोचते हैं वही तो हमें दिखाई देता है सिनेमा पर। तो ऐसे प्रकाश मेहरा। अब कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद में गाना सुनते हैं, वही ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, सुनते रहिए।
1: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट। पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
2: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
3: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
4: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
3: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, बात है।

ग्यारह बजकर 50 मिनट और 50 सेकंड हो रहे हैं। तरुण आपके साथ में है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। प्रकाश मेहरा ने ये भी अमिताभ बच्चन के माध्यम से हमें बता दिया कि उनके दिल में क्या रहता था, क्या सोचते थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्में एक साथ में की, जिसमें सातवीं फिल्म जो थी वो थी जादूगर, जो कि फ्लॉप रही। मतलब ये अमिताभ बच्चन के साथ में इनकी आखिरी निर्देशित और निर्माण वाली फिल्म थी। पर उसके बाद में इन्होंने अनिल कपूर की जिंदगी एक जुआ भी बनाई थी, जो कि एक बहुत अच्छी फिल्म थी। हालांकि फिल्म ज़्यादा चल नहीं पाई। और फिर उसके बाद आखिरी अगर इनकी फिल्म निर्देशन की कही जाती है तो वो कही जाती है पूरू राजकुमार की। राजकुमार साहब के बेटे होते हैं जानी हम राजकुमार हैं, उनके बेटे को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई थी बाल ब्रह्मचारी। तो उसमें भी इन्होंने निर्देशन किया था, पर वो फिल्म भी नहीं चली। और फिर ये आखिरी फिल्म उनकी निर्देशन की रही। लेकिन 90 के दशक में एक फिल्म का निर्माण ज़रूर किया था, दलाल फिल्म थी जो मिथुन चक्रवर्ती की थी, ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार, गीत याद होगा आपको। इनको बहुत अचीवमेंट मिले, पुरस्कार मिले इस तरीके से बहुत। और हॉलीवुड में भी अगर यूँ कहें कि कुछ पहले निर्देशकों में अगर नाम कहें जिन्होंने बॉलीवुड को हॉलीवुड में रखने की कोशिश की थी, यानी खुद वहाँ कदम रखने की, तो उनमें से एक थे। इन्होंने द गॉड कनेक्शन नाम से एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी, पर फाइनेंशियल इतना ज़्यादा उसमें खर्चा हो रहा था, इस कारण से वो फिल्म नहीं हो पाई। और 17 मई 2009 था जब यह मुकद्दर का सिकंदर जो है ज़िंदगी को कह गया कि तुम तो बेवफा हो, तुमने ठुकरा दिया। निमोनिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण प्रकाश मेहरा साहब 17 मई 2009 को इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन पीछे छोड़ गए इतनी सारी फिल्में, गोल्डन फिल्में। वीवी का टीवी सलाम करता है, 100.3 एफएम सलाम करता है इस जियाले निर्माता निर्देशक को।

ग्यारह बजकर 54 मिनट हो रहे हैं और इस तरीके से मुकद्दर का सिकंदर कैसे बना जाता है, कैसे लाइफ में संघर्ष करके अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाया जा सकता है, वो सब कुछ सिखाया प्रकाश मेहरा ने। तो इनकी इस सुनहरी सौगात से हमने यही सीखा कि लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं, पर एक जुनून होना चाहिए और उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब चलते चलते एक इन्हीं की फिल्म का गीत लेते हैं, जो कि बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बैंड बाजा लेकर अमिताभ बच्चन निकल पड़ते हैं और ये गीत ही अपने आप बताएगा। इस गीत के सारे छोड़े जाता हूँ, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा लोगों में प्यार बांटिए और कभी किसी को नाराज़ मत करिए। कोई नाराज़ हो तो उसे मना लीजिए। बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे FM रेडियो पिंक सिटी, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर।
1: समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0% शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे, दूरियां फिल्म का नाम था, सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। जसलीन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौसर मुनीर ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और जीवन शीर्षक से जुड़े गीत।
4: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आरडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक संवाद और विचार विमर्श की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने विधानसभा को लोकतंत्र की पाठशाला बताते हुए कहा कि सरकार को जनप्रतिनिधियों की आलोचना भी गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही जनता की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है।
1: अगर कोई मंच होता है तो लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं होती है जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो। और मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेह जनपद भी होना चाहिए। अब समय गया, समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता जवाबदेही उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, आज जनता उत्तरदायी जवाबदेही शासन मानती है।
0: सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की यात्रा लोकतंत्र की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ विधायकों ने प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा सदन में अकाल, बिजली और जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर सार्थक चर्चा के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
2: जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया, लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आप सभी ने जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, ये हमारे विचार में है, और इस विचार और संस्कार के माध्यम से आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हमारे इस राजस्थान को गति देने का काम किया।
0: कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई पूर्व और वर्तमान विधायक शिरकत कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से आज दोपहर कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हाल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। श्री खींवसर इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ बनाने तथा उपचार व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के आसींद में आज तड़के एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ब्राह्मणों की सरेरी गांव के पास राजमार्ग पर एक कार गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। मृतकों में एक युवक भीलवाड़ा जिले का जबकि 2 युवक बिहार के रहने वाले थे और भीलवाड़ा में केटरिंग का काम करते थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, निर्माण कार्यों और कवच प्रणाली से जुड़े काम समय पर पूरा करने को कहा। साथ ही मानसून के दौरान रेलवे ट्रैक, विद्युत और सिग्नल प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद ना करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे, यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक ओर सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तां, और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए। लेकिन ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में से गुजरता ज़रूर है, और वो कहते हैं ना कि ज़रूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम स्मृतियां और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं, देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के। चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे। प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रियतमा फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये ज़रूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहाँ प्राप्त करना चाहता है, वहाँ उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल। रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल। और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार, ताकि हर कोई अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। अक्सर ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए। और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि जिंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियाँ बदलती रहती है और मौसम भी तो बदलता रहता है। मौसम का काम ही बदलना है, कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा ही कुछ है। अगला गीत समा के ऊपर आप सुनिए और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके संदेशों का।

ज़मीन आसमां। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलता ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समा ना होता इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन। ऐसा समाना होता, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूज़िक या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम करने वाले से ज़्यादा सितम सहने वाले को पता होता है, फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो, कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं, हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है,

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे और आपका अंदाज़ा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर, बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है, सचमुच सुरीले सफ़र में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ पर आदत की बात की गई है वहाँ सुबह सूरज के उगते उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं, दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है, जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते, जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा ज़रूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही

पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं, लेकिन ये गीत यहाँ पर एक शब्द छुपा है।

आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूँ, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसे ही कुछ एक चीज़ें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज़ करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीज़ों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना ज़रूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज़ में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएँ जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाज़ों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज़ में। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों, युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं, वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

दोस्तों, किसी ने कहा है, प्रतिभा जन्मजात हो सकती है लेकिन कौशल लगातार अभ्यास और सीखने से विकसित होता है। हर युवा अपने जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसे सोपान हैं जो हर युवा को अपने व्यक्तित्व और कौशल को निखारने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला सोपान, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके अलावा निरंतर सीखने की आदत, बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सोपान है अनुशासन और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव रखता है। चौथा सोपान है संवाद और आत्मविश्वास। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और पांचवा सोपान है तकनीकी और डिजिटल दक्षता, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और लगातार अभ्यास करें। यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को साधारण से असाधारण बना सकते हैं।

दोस्तों, आज का युग डिजिटल और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। ऐसे में रोजगार के अवसर भी तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवा अपने कौशल के बल पर रोजगार तलाशते हैं। वो अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। यदि युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण पा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन संचालक और CNC मशीन, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी आज रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जरूरत है उन्हें अपनी प्रतिभा जानने और पहचानने की। सरकार की ओर से भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और कम समय में अच्छे रोजगार तलाश सकें। जो युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय भी वे चला सकते हैं। तो युवाओं के सामने रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि सही रास्ता वो चुन सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया, सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, स्वच्छनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एस डी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

गाइड फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों को। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, एसडी बर्मन की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और सुनने वाले हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहाँ पानी नहीं बरस रहा वहाँ बरसे,
1: ये हम प्रार्थना करते हैं,
2: ये प्रार्थना करते हैं और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
1: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल। हाँ, है ना?
2: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस ली, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
1: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
2: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
1: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
2: सही बात है। और देखो इसी के साथ हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं। जी, हमें ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
1: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त हम मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। वैसे हमारे
2: मकई का हलवा, मकई का सूप बनता है,
1: मकई की खीर,
2: यानी अनंत है। और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते हैं।
1: और साथ में मंजरी जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते हैं,
2: होता है। और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की खत्म हो गई, इसका भी तो होता
1: है, और वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, पर उसमें जो प्यार होता था ना, उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना। वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
2: नहीं, कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
1: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
2: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हम लोग?
1: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
2: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता है,
1: यानी अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं। जी।
2: और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़ें, है ना,
1: और खूब तरक्की करें,
2: खूब तरक्की करें। और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही AI की समझ, AI टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन, साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना, साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना, और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल, और सोनाली इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएँ वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य और उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल, और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को
0: डेवलप करना चाहिए।
1: और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहिणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो है वो दूसरे दूसरे प्रांत की डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं, और जिससे जो गृहिणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल, और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा दे करके कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं।
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है,
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं, और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी

0: तो सुना ली, बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में, सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और
0: ना?
1: जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर भी उस एक दूसरे की तारीफ से, उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। तो देखो आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।

0: बिल्कुल। और अर्ली सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन। उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है। धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है। ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया जाता है। और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं,
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं, और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिज़ाइन की जांच की जाती है। और एक उत्कृष्ट अर्नी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक, और जबकि जटिल डिज़ाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं, जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और जामेती डिज़ाइन होती है। और ये साड़ी वज़न में बहुत हल्की होती है, और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है। साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अर्नी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अर्नी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिज़ाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अर्नी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है।
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है, और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियाँ सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्नी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें। अर्नी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए, ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अर्नी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
1: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है, जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अर्नी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
0: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है,
1: और नहीं है तो खरीद ले।
0: और फिलहाल ये सुने गीत
1: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी, है ना। तो
1: कि जब हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना। साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
1: यानी ये जो छोटी सी जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत क्या कलेजा चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से किस
1: हमारी हिम्मत बढ़ जाती है,
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं। तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहाँ विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहाँ केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें हिम्मत उठानी, हिम्मत दिखानी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए, असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है
0: ये
1: ना?
0: तो बहुत सही बात आपने कही है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले, हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो, ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत आयत प्रयोग करते हैं। हम तो हिम्मत हार गए, या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति कि वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
0: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आपको खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है इनको लिखना है, जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल, इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सोनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप हैं। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं हो तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे।
1: उनकी आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबीयत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फ़ोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी ज़रूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते जब सिर्फ दीवारें साझा हों, पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है। तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्यौहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं। तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज़्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुँचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहाँ से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज़ कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज़्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती हो। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
1: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है। त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार। खुशी, गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
1: एक साथी लिखते हैं, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोह में सहयोग के तरीके किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी। हाँ। तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये छोटा सा बर्तन।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैन जी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं, फ्लैट और सोसाइटी में ये ज़्यादा दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे ज़माने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौंक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था। और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी, या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। ये भावनात्मक नकारात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात
1: बहुत लिखी सही है। बात की, और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे शहरों में और गाँव में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं, पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर। जी

0: तो भाई देखो सुनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले लेते।
1: बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई खाने का आनंद बढ़ता
0: है ना जी। चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिख कर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक एक डेढ़ कप या दो कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है एक छोटा प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसका चाट, इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाएं। एक बड़े कटोरे में गर्म या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहे दे आए आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताज़े नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गर्म करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते हैं, पर मैं तो कहूँगी किसी की ज़रूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और एक सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं। तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छी।
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जी को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो यानी अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गर्म गर्म सूप जो है ना ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं कुछ नई चीज़ हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज़ बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते रहना
1: चाहिए। और श्रोताओं को कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं इजाज़त। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।
2: आज के

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव। और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला, और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी। और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। हाँ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
1: अच्छा।
2: बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है। और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का? इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए, उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं। विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी, कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से, वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
2: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहाँ भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
2: इसमें
1: क्या रिसर्च किया आपने?
2: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं, जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है। तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ।
1: जी जी।
2: हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया, कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
2: जी हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
2: ममता जी व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में हैं।
1: जी
2: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता था।
2: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो।
1: जी
2: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी वो भी मध्य प्रदेश के थे।
1: जी जी जी।
2: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं, और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज अंकुरित होते रहे।
1: जी।
2: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
2: हाँ जरूर, मैंने कुछ

0: संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे उनके व्यंग, दुबई से, वो ले करके और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही
0: व्यंग में? मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज़ की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है,
1: जी जी,
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को
0: कोई हमने एक पात्र चयन किया, जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंकर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी जी,
0: कई बार ये स्थितियां होती हैं।
1: तो हम किंकर्तव्य विमोड नहीं हो सकते हैं, हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का गाना,
0: अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियाँ भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी हाँ
0: एमटेक किया,
1: जी हाँ
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहाँ पहुँचे और कोई ख़ास याद वहाँ से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करेंगे।
1: मैं इसके लिए कहूँगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: मैं इतना लकी नहीं था,
0: विरोधाभास
1: विरोधाभास रहा मेरे
0: रहा
1: जीवन में,
0: है जी।
1: क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूँ
0: हाँ
1: कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूँ। मंडला में मेरे दादाजी जो थे, उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे
0: बात है।
1: पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं
0: जी
1: जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी। तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले
0: क्या बात है।
1: थे।
0: उस
1: तो
0: समय पढ़ने का एक
1: जी हाँ,
0: खास शौक
1: और
0: हुआ करता
1: पढ़ने का
0: था, दौर
1: शौक
0: था
1: था,
0: पढ़ाई
1: बहुत
0: का।
1: दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे।
0: जी
1: रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम, वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई
0: जी
1: बहन दौड़ते थे, जब भी कोई नया पत्रिका का अंक
0: कि
1: आता
0: कौन
1: था
0: पहले
1: कि
0: पढ़ेगा।
1: कौन पहले पढ़ेगा। तो ये जमाना था। तो
0: मनोहर
1: मैंने,
0: श्याम जोशी का
1: जी हाँ,
0: साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
1: साप्ताहिक
0: तो वो इंतजार
1: हिंदुस्तान,
0: होता था कि कौन पहले
1: धर्मयोग,
0: पढ़ेगा। धर्मयोग।
1: धर्मयोग,
0: जी जी
1: और वो उससे भी पहले
0: हाँ
1: छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए।
0: जी
1: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था, ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना
0: तो
1: जाता था।
0: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप
1: गणित,
0: तो साहित्यिक
1: जी हाँ,
0: रुचियों में जा
1: रुचि
0: रहे
1: में
0: थे,
1: था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा।
0: अव्वल थे।
1: जी हाँ, तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो
0: क्या
1: मैंने
0: बात है,
1: रायपुर
0: बढ़िया।
1: से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
0: एमटेक में।
1: MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में। तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम, तब तक वो कंपनी बदल लेते
0: तब आपने एक जगह
1: हैं।
0: नौकरी ज्वाइन की तो
1: लगातार
0: बस
1: की।
0: वहीं पे स्थायी रूप से,
1: जी
0: लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है,
1: जी
0: लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद
1: नहीं,
0: आती
1: आप
0: है।
1: सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग
0: खपत
1: ज़्यादा थी,
0: ज्यादा थी
1: खपत
0: जी।
1: ज़्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफ़ी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा मैं, कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहाँ पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है उसको, पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है,
0: जी
1: उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पनबिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी

0: लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है, तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं, और परमाणु बिजली होती है। तो मैं मंडला में पदस्थ था, तो मंडला ज़िले में एक छुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस ज़मीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से ज़मीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया, और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और ज़मीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी बड़ी अच्छी जानकारी दी, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: ज़रूर,
1: कौन
0: जरूर।
1: सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर,
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध
0: किया था, और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं, और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो ये
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है, और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात तो, है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे? आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं

0: वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से, उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
1: जी
0: रहे,
1: जी जी
0: ये उनकी, उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
1: क्या बात है।
0: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीपी की तरफ से, क्यों, क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई।
1: जी
0: तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
1: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
0: हाँ श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती ही हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते थे।
1: जी
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल
0: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है,
1: जी
0: जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके।
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं, और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है।
0: जी हाँ,
1: चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं, तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये
1: जी जी
0: 1959, ये मेरे
1: अनाड़ी फिल्म का गाना है।
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959,
1: अच्छा,
0: 28 जुलाई
1: क्या बात है।
0: 59।
1: तो
0: जी
1: सुनते हैं यही
0: जी
1: गाना।
0: हाँ,

0: फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं।
1: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए।
2: जरूर,
1: लिखते समय
2: व्यंग मेरी मूल विधा,

0: जी
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागज़ों पर उतार देता हूँ और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज़्यादा सहज और सरल समझता हूँ। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं,
0: जी
1: जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और
0: बिल्कुल
1: आप इसे समझ सकती हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूँ। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था,
0: जी
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं,
0: जी जी
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूँगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।
3: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफ़ेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर

0: उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
1: क्या बात है।
0: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
1: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
0: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगीं तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
1: जी जी।
0: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूँ मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाद जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चू जैसा कुछ लिख गया। आगाद जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं आगाद हूँ, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। आगाद जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। आगाद जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चू नाद है। सोशल मीडिया पर चू ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना।

0: जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं
1: जी जी,
0: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है
1: जी।
0: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के यथार्थ नायक जो जिस ढंग का जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
1: तो आपको क्या लगता है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
0: जी
1: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज़्यादा, आपके नज़रिए से क्या है?
0: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा टिकट लगा लिफाफा रखना होता
1: जी जी।
0: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
1: क्या बात है,
0: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी हैं रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
1: से इंतजार होता
0: जी हाँ
1: था।
0: ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया और स्वसंपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी।
1: जी,
0: जब
1: जी,
0: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, अब सब कुछ टर्न हो के
1: जी हाँ, एक समय था आर्कुट,
0: एक समय
1: बहुत
0: जी हाँ, तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
1: जी जी,
0: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
1: एक पुल का काम
0: पुल
1: करते
0: का
1: हैं,
0: काम करता
1: कि
0: है जी हाँ।
1: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
0: नहीं उससे परिष्कार भी
1: पार
0: होता
1: जा
0: है,
1: सकते
0: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूँ तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूँ और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है,
1: तो क्या प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी,
0: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित
1: जी।
0: तो जो कुछ हम जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें ना रहें साहित्य रहेगा
1: जी, बिल्कुल, किताब रहेगी,
0: किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए, अब उनके मम्मी पापा वहाँ क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी,
1: एक उनकी बाकायदा दुनिया
0: हाँ,
1: है और एक, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
0: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
1: जी जी,
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं।

0: आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं समाज
1: जी
0: में।
1: प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए हैं, आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: फायदे नुकसान?
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
1: जी
0: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं। अभी मैं
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं?
0: जी हाँ,
1: नाटक भी था
0: जी।
1: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ, सायास मतलब कोई ज़बरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है, मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
1: जी, तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक विषय?
0: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है, किसी बात को लेकर के बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब कामवाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहाँ से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती
1: है, सहायिकाएं होती हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
0: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियाँ नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियाँ हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पर उनसे बात करती, तो ये एक को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य एकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे DPS लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटें तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना, भाव काव्य के मंथन करते घर लौटें तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटें तो अच्छा
1: अच्छा लगता है। क्या बात है।
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटें तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट
0: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है।
1: वाह।
0: कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो
1: जी
0: क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तां हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन
1: जगह,
0: हुआ।
1: हाँ, मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर दो।
0: दो।
1: और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आँखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियाँ आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज़ की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी झलकियाँ, मैं कामना करता हूँ कि विविध भारती से भी
0: जी
1: आएँ,
0: बिल्कुल
1: और इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी, ज़रूर आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये ज़रूर होगा। हमें अब बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
1: जी
0: सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है एक तरह
1: विस्मृत
0: से
1: हो रहे,
0: आजकल।
1: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो

0: ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता
1: है। जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ, नमस्कार।
0: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। अनमोल होते हैं प्यार करने वालों के नगमे, सितारों से कढ़ी चूनर ओढ़कर निकली है रात की परी, तब सजी है महफिल मोहब्बत के तरानों की। सितारे करते हैं जुगलबंदी हवाओं की थाप पर, लंबी रातें छोटी हो जाती हैं इस गूंज के साथ।

रात ने हवाओं से भेजा है पैगाम, आसमान के नाम, सुर्ख नीले आसमान पर फैल गई है लाली, नजर आ रही है चांद की परछाई। इस खूबसूरत फिजा में मन लिख रहा है प्रेम के गीत, कलम से झर रहे हैं सिर्फ प्यार के अल्फाज।

अंकुरी अंकुरी खिल जाता है सूरजमुखी, धूप की पहली किरण से गुलाब की पंखड़ी पर ठहरी ओस की बूंद मुस्कुरा उठती है। नरम धूप का टुकड़ा गुलमोहर सा सुंदर लगता है जब छा जाता है नशा प्यार का। छुई मुई हो जाता है मन जब मिलता है साथ चाहने वाले का।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। नींद में देखा था एक सपना कि कोई आया है नेह की पाती लेकर, कि कोई आया है अंजुरी भर प्यार का पैगाम लेकर। फिर जागती आंखों ने सजाया ख्वाब और वही ख्वाब बन गया जिंदगी का मकसद। मन में कचनार की कलियां फूटने लगीं, फूल बनकर महकने को आतुर हो उठीं।

जब गहराता है प्यार का एहसास, तो जैसे थके पांवों को मिल जाती है मंजिल, जैसे दिल की धड़कनों में बज रहा हो कोई साज, मौसम का हर मिजाज भला लगने लगता है, मन से मिट जाता है जमाने के लिए रंज, नजरों को इंतजार रहता है हर पल उस शख्स का जिसने लिखा है नाम मन की स्लेट पर।

कभी कभी मोहब्बत के रंग में घुल जाता है उदासी का रंग, कभी कभी ख्वाबों का रंग फीका हो जाता है, कभी कभी मिलन की घड़ियां ठहर जाती हैं, कभी कभी इंतजार सिर्फ इंतजार रह जाता है। आती है याद लेकिन नहीं आता वो जिसका हो इंतजार।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों से। संगीत अजय अतुल का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के फिल्म का नाम ब्रदर्स।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दो रास्ते, अब सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, रचनाकार हैं आनंद बख्शी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आई दिन बहार के, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रचनाकार आनंद बख्शी, आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

आए दिन बहार के अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को सुना। अगली आवाज केके की फिल्म है तुम मिले। सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

अभी आपने केके को फिल्म तुम मिले में सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपये से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवार डांगोआपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमेरिका ने

0: होर्मुज जलन अमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी का गाया गीत बोल अनजान के फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अरिजीत सिंह का गाया विलेन फिल्म का गीत सुनिए, गीत संगीत मिथुन का।

अभी आपने चांदनी फिल्म में आशा भोसले और विनोद राठौर को सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें विशाल ददलानी, शंकर महादेवन, ईशान नूरानी और गुलराज सिंह की। शंकर एस एल लॉय के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। फिल्म का नाम था जैसे को तैसा। आर डी बर्मन ने तर्ज बनाई थी, वो लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि जनता मतदान कर लोकतंत्र में अपना भरोसा बताती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष में आयोजित वर्तमान और पूर्व विधायकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। संसद पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं राज्य विधानसभाएं गांवों, नगरों और परिवारों की आशाओं, सपनों और चिंताओं को की आवाज है। यही विधानमंडलों का मूल स्वर और गरिमा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने निर्वाचकों से विनम्र होकर मिलने और धैर्य तथा संवेदनशीलता से उनकी बात सुनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उसके सार्थक और नीतिगत सुझावों को जरूर अमल में लाना चाहिए। इससे बड़ा बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति विधानमंडलों भवनों की भव्यता में नहीं बल्कि उनमें होने वाले गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चाओं में निहित है। इससे पहले समापन सत्र को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सभी का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश का विकास है।
3: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहां विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। सम्मेलन में पूर्व और वरिष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इससे देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शे पर लाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
4: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं। फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती हैं, तो

0: यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है, यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है, 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इस योजना की अवधि में लगभग 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। इससे लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि निर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। चुनाव, मीडिया और मतदाता शिक्षा को लेकर आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान तथा एनएलयू जोधपुर की ओर से इसका आयोजन किया गया। एचसीएम रीपा में हुई इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि युवा प्रजातंत्र का अहम हिस्सा है। स्कूलों और कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए गए हैं।
2: हमारे जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में उच्च जोखिम वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की जाएगी। ANM, आशा सहयोगिनियां और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत का ब्यौरा रखेंगे। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आज बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम इसके वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। श्री खेवसर ने कहा कि अधिकतर मामलों में किसी तरह के संक्रमण और दवाओं के रिएक्शन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
3: जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारी पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हो गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
1: विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रभात फेरी, रैली और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन सत्र भी रखे गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके कौशल विकास पर बल दिया गया। समारोह में कौशल, रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री KK विश्नोई ने कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री विश्नोई ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
4: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद और योग को दुनिया भर में नई पहचान दी है। उन्होंने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक

0: तथा मिनीवाली इन्वासी टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।
1: राज्य सरकार सरकारी स्कूली भवनों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने आज जयपुर जिले में विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण कर भवनों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। श्री यादव ने अधिकारियों को विद्यालय भवनों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में लोग मॉनसून के दूसरे दौर के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में हुई बारिश से गर्मी से राहत रही, बाकी स्थानों पर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। विभाग ने आज 18 जिलों के लिए गरज चमक के साथ बरसात की गतिविधियों का येलो अलर्ट बताया है। जयपुर में पहली बार कल विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश तथा पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में अगले महीने ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। 6 और 7 अगस्त को होने वाली इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी इंतजाम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिला पिछले महीने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष चर्चा में रहा। पीएम किसान उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह पाली में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें शिरकत की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने नेत्रा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद किया तथा शिविर के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल सुमेरपुर में भी शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों में चयनित 763 नवनियुक्त युवा युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जिला स्तर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आशा, ANM और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क कर आमजन को परिवार नियोजन साधनों और स्वस्थ परिवार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। ये गतिविधियां 18 जुलाई तक चलेंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम पाली के लाखोटिया उद्यान में किया गया। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड और आमजन ने कार्यक्रम में भाग लेकर योग किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के जनकल्याण के थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने छोटी छोटी बीमा योजना लाकर आमजन को सुरक्षा प्रदान की है। हर घर नल के तहत 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया है। अंतिम छोर तक के व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 15 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान

0: चिकित्सा कर्मी, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर दस्त रोग से बचाव, हाथ धोने की सही विधि, स्वच्छ पेयजल के उपयोग और ORS तथा जिंक के महत्व की जानकारी दे रहे हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों को ORS पैकेट और जिंक की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों सादड़ी के दौरे पर रहे। वे सादड़ी में शिवनगरी में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 12 ज्योतिर्लिंग महिमा तथा 21 कुंडीय महारुद्र महायज्ञ रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। VBG रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारम्भ समारोह बाली के कोट बालियान ग्राम पंचायत में किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का LED स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कोट बालियान गांव के खेल मैदानों में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। टेक्सटाइल उद्योग की पहचान रखने वाले पाली अब पैकिंग बैग का नया केंद्र बनता जा रहा है। लघु उद्योग भारती की पहल पर साड़ी, सलवार सूट सहित विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। खास बात यह है कि बैग निर्माण में सिलाई कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा घर पर ही किया जाता है। जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बाजारों, पार्कों, हॉस्टल सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिजर्व पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने महिलाओं को सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर सम्मानित किया। इसी के साथ पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझा बगत्रा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जनतारी सेवा ने जननुमाइंदारी सब मोटी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं री बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनने री अर्ज करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माते मोहर लगाई। राज्य में आस वाली महिलावारा स्वास्थ्य जांच रो सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। 32 जोखिम वाली महिलावारी खास निगरानी करी जाएला। और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर रे सक्रिय होन रा आसार रे बीच 18 जिला शुरू बिरखारो अलर्ट। समाचार साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कहो है कि जनता मतदान करने लोकतंत्र में आपरो भरोसा बतावे है। वना जन नुमाइंदाओं जनतारा ई भरोसा ने बनाए रखन सारू पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन रे साथ काम करन री अर्ज करी। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रे मौके विया मौजूदा एर पहली रा विधायिका रा सम्मेलन में बोल रिया हा। उपराष्ट्रपति कहो के राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र री धड़कन है। संसद पूरा देश री आसामा री नुमाइंदगी करे है। वठे राज्य विधानसभा में गांवा, नगरा एर परिवारा री आसामा, सपना एर चिंतावा री आवाज है। यही विधानमंडला रो मूल स्वर एर गरिमा है। वणा जन नुमाइंदाओं आपरा वोट देवन आलाओं नमने मिलन और धीरज और संवेदनशीलता रे साथ वारी बात सुनन री अर्ज करी। उपराष्ट्रपति कहो के जन नुमाइंदा चाहे सत्ता पक्ष रवे चाहे विपक्ष रा, वारा सार्थक और नीतिगत सुझाव ने जरूर काम में लावना चाहिए। इणु मोटो बदलाव आवे है। वणा कहो के लोकतंत्र री ताकत विधानमंडला रा भवना रे शानदार होवणो नहीं है, बल्कि वामाय गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चा में है। इणु पहला समापन जलसा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संबोधित करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि जन नुमाइंदा रा विचार न्यारा न्यारा वह सके है, फिर उन सगणों रो मूल मकसद जनता री भलाई है।
2: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपने

0: जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में शिरकत करी। सम्मेलन में पहली रा 18वां विधायका नो सम्मानी करी जियो। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजना ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में आज भी मीटिंग में वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनावन रा प्रस्ताव माथे मोहर लागी है। बैठक रह पछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबरनविसा ने फैसला की जानकारी दी। वणा बतायो के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सारू 1,27,500 करोड़ रुपया रा बजट ने मंजूरी दी रही है। इणु देश ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शा माथे लावण माए मदद मिलेला।
2: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती हैं, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
1: मंत्रिमंडल 62,500 करोड़ रुपया रा बजट रे साथ है मोबाइल फोन विनिर्माण योजना ने मंजूरी दी है। श्री वैष्णव कहो के आ योजना आवता 5 साल में लागू करी जायला। ई योजना री भगत में कोई 39 लाख करोड़ रुपया रा मोबाइल फोन बनाया जायला। इणु कोई 60,000 लोगों ने सीधी नौकरियां मिलन री आस है। मंत्रिमंडल यूरिया सारू राष्ट्रीय निवेश नीति ने मंजूरी दी है। इनरो मकसद यूरिया हल्का माय नुआ निवेश ने बढ़ावो देवणो है, जिणु आत्मनिर्भरता रो लगस हासिल करियो जा सके। चुनाव मीडिया और मतदाता शिक्षा ने लेर आज जयपुर माय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी। नवी दिल्ली रा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान और NLU जोधपुर का न्यू इनरो आयोजन करी जो। SCM रिपा माय भी ई संगोष्ठी माय बोलता मुख्य चुनाव अहलकार नवीन महाजन कहो के युवा प्रजातंत्र रो अहम हिस्सो है। स्कूल और कॉलेजा माए मतदान प्रक्रिया रा बारा माए जागरूकता बधाई जावे। इसारू राज्य माए 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाई जा है।
3: हमारे जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
1: ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश भर में आज आसवाड़ी महिलाओं रा स्वास्थ्य जांच रो मोटो स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुई हो। 5 दिन तय चालन वाला ई अभियान में ऊंची जोखिम वाली महिलाओं री खास निगरानी करी जाएला। ANM आशा सहयोगिनिया और CHO गर्भवती महिलाओं री सेहत रो ब्यौरो राखेला। ई बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बांसवाड़ा में मीडिया साथे बतल में कहो के सरकार आसवाड़ी महिलाओं रा स्वास्थ्य ने लेर घनी संवेदनशील है। न्यारी नारी ठोड़ा माथे अजय वी प्रसूता मारी मौत रा सवाल माथे वणा कहो के विशेषज्ञ री टीम ने वास्तविक कारण री जांच कर रही है। श्री खींवसर कहो के घनकरा मामला में किणी तरह रा संक्रमण एर दवाइयां रा रिएक्शन अजय तय सामी नहीं आया है।
4: जयपुर से एक विशेष दल आया है, यहाँ पर हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारे पूरी मीटिंग हुई है। जो 2 की डेथ हुई, हाई BP और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से 2 की डेथ हो गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब और जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
1: विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके आज प्रदेश में न्यारा न्यारा आयोजन हुआ। प्रभात फेरी रैली और दूजा जागरूकता कार्यक्रम री मार्फत नौजवाना ने आत्मनिर्भर बनन रो संदेश दी रिज्यो। साथ ही न्यारी न्यारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कैरियर मार्गदर्शन सत्र राखी जा। जयपुर में हुआ कार्यक्रम में नौजवाना ने

0: स्वावलंबी बनावण सारू वहाँरा कौशल विकास माथे जोर धीरी जो। जलसामाय कौशल रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री के वैष्णोई कौशल विकास रा हल्का माय चोखो काम करने वाला नौजवाना रो सम्मान करियो। जलसामाय बोलता श्री विष्णोई जवाना ने कौशल सिखावण ने जोड़ ने रोजगार रा मौका मुहैया कराने री सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई।
1: पिछले ढाई वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुर्वेद हल्का माय आधुनिक तकनीक काम माय लेवण माथे जोर दियो है। आज नई दिल्ली माय सोश्रुतम 2026 रा उद्घाटन जलसा माय बोलता श्रीमती मुर्मू कहो के सरकार आयुर्वेद और योग ने दुनिया भर में नोई पिछाण दी है, वरना आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा री प्राचीन परंपरा ने वैज्ञानिक मानका माथे स्थापित करने री कोशिश माथे खुशी जताई। राष्ट्रपति कहो के आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा रा वैश्विक मानकीकरण ने मजबूत करण सारू विश्व स्वास्थ्य संगठन रे साथे मिलने काम करे।
2: आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन के आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा पीने वाले इन्वेसिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता।
0: और अब मौसम। प्रदेश भर में लोग मानसून रा दूजा दौर रे शुरू होने रा इंतजार कर रिया है। फिर वही लारला 24 घंटा में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और अलवर में भी बिरखाओं गर्मियों आराम मिलियो है। बचौड़ी ठोड़ा माथे लोगों ने गर्मी और उमस रो सामनो करनो पड़ रियो है। मौसम महकमा रे मुजब मानसून एक कर फिरों सक्रिय वह रियो है। महकमो आज 18 जिला सारू गरज चमक रे साथ बिरखारी गतिविधियां रो येलो अलर्ट बतायो है। राज्य सरकार सरकारी स्कूल भवनारी हिफाजत न लेर घनी सावचेत और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव आज जयपुर जिला में न्यारी न्यारी स्कूलों रो औचक निरीक्षण करने भवनारी हालात री जानकारी ली। इस दौरान वना हिफाजत और बुनियादी सुविधाओं रो जायजो लियो। श्री यादव अहलकारा ने स्कूल भवनारी हिफाजत रा बारा में जरूरी दिशा निर्देश दिया। वना कहो के स्कूल भवनारी हिफाजत न लेर कोई समझौतो नहीं करियो जायलो। जयपुर में पहली बार काले विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस होवन जारी है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार कानियों आ कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वेला। इनमें हिफाजती प्रवासन ने बढ़ावो देवण, फर्जी एजेंटों बचाव और प्रवासियों का कल्याण, निवेश और पर्यटन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जायला। जयपुर में आवता मीना ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग वेला। 6 और 7 अगस्त ने होने वाली ई मीटिंग ने लेर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तैयारियां री समीक्षा करी। वना इणु जुड़िया महकमा ने सगला इंतजाम तय भगत माथे पूरा करण रा निर्देश दिया। मुख्य सचिव महत्व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सारू हिफाजत और दूजा बंदोबस्त चाक चौबंद राखण ने कहो है। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरू सुन ले रहो। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जनतारी सेवा ने जन नुमाइंदारी सबू मोटी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं वारी बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनन री अर्ज करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माथे मोहर लगाई। राज्य में आस वाली महिलाओं वारा स्वास्थ्य जाँच रो सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। 32 जोखिम वाली महिलाओं वारी खास निगरानी करी जायला। और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर सक्रिय होने रा आसार रे बीच 18 जिला सारू बिरखारो अलर्ट। नरेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मारू आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: अभी आपने नया दौर फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और बलवीर की थी। संगीत ओपी नैयर का, बोल साहिर लुधियानवी के। लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का था।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए अब सुनिए कर्मा फिल्म का गीत किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अभी आपने कर्मा फिल्म में किशोर कुमार और कविता कृष्ण मूर्ति को सुना। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की फिल्म का नाम नया दौर।

अभी आपने कलाकार फिल्म में किशोर कुमार को सुना। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बोल लिखे थे इंदिवर ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात फिल्म का गीत, संगीत आडी बर्मन का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए किशोर कुमार को फिल्म झील के उस पार में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

प्यार का मौसम। अब सुनिए इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग बागेश्री से। गीत लिखा है शैलेंद्र कुमार ने, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज लता मंगेशकर की।

अभी आपने राग बागेश्री पर आधारित गीत सुना, फिल्म थी रंगोली। अब सुनिए राग खमाज पर आधारित गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब राग खमाज के बाद आते हैं राग भीम पलासी पर। फिल्म है काला बाजार, आवाज मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत एस डी बर्मन का।

0: रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी।
1: ये था राग भीमपलासी। और अब कार्यक्रम के अंत में राग भैरव पर आधारित गीत सुनिए बैजू बावरा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, बोल लिखे शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद का।

आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी वादों की शाम। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: आज शाम
1: वादों के नाम
0: हमारी शादी के वर्षगांठ का दिन
1: आज की शाम को दोनों का
0: प्रणाम। हर साल की तरह
1: हम एक दूसरे को
0: साक्षी मानकर
1: मैं यानी सुदेश कुमार बिंदु,
0: मैं कमला श्रीमती सुदेश कुमार
1: बिंदु।
0: ओ बिंदु तो तुम्हारा साहित्यिक नाम है।
1: वो तो क्या हुआ, पूरा नाम लेकर ही शपथ ली जाती है।
0: चलो हो गया ना, अब आगे बढ़ो।
1: शपथ लेते हैं
0: हम एक दूसरे के प्रति
1: वफादार रहेंगे,
0: प्यार से रहेंगे,
1: झगड़ा नहीं करेंगे,
0: कभी नहीं लड़ेंगे,
1: एक दूसरे का आदर करेंगे,
0: एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे,
1: मन की बात बताएंगे,
0: झूठ नहीं बोलेंगे,
1: सच सच कहेंगे
0: और किए हुए वादों को पूरा करेंगे,
1: वादे पूरे करेंगे जो कभी पूरे नहीं हुए। ठहरो ठहरो, क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मैं आज वादों की शाम की खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर फिर भी क्या पूछ सकती हूँ कि तुम जो कहते हो उस पर अमल भी करते हो?
1: मगर कौन सा वादा कह के ये और कुछ कहा ना गया कि मुझे आपसे शिकायत है।
0: अभी बताती हूँ।
1: अरे अरे कहाँ जा रही हो?
0: ये देखो।
1: ये क्या, कागजों का पुलंदा? अरे अरे तुमने भी कोई उपन्यास लिख डाला?
0: उपन्यास? जी हाँ, उपन्यास ही है शिकायतों का।
1: शिकायतें? अरे बाबा, बिगड़े हुए हैं, जिद पे हैं, कोई उनसे क्या कहे, इस वक्त बात बात के दफ्तर बनाएंगे।
0: तो आज्ञा है, खोलूं शिकायतों का दफ्तर?
1: ना बाबा, बंद ही रहने दो इस दफ्तर को। आज शाम प्यार की शाम है, वादों की शाम है, हमारी शाम है, जितनी भी हसीन बन सके बनाई जाए।
0: तुम एक शाम की बात करते हो, यहाँ मैं हर शाम इंतजार करती रही, कब आप पिछले साल वादों की शाम की वादों को निभाने शाम को जल्दी घर आते हैं।
1: कमला मैम,
0: सबके सब पुरुष 5 बजे घर आ जाते हैं, कोई अपनी पत्नी का हाथ बटाता है, कोई बच्चे खिलाता है, कोई पत्नी को लेकर बाहर घुमाने चला जाता है, मगर तुम हो के।
1: कमला, तुम मेरी तुलना उन क्लर्कों से करती हो जो संसार में केवल क्लर्की करने आते हैं और क्लर्की रिटायर हो जाते हैं।
0: उनकी पत्नियां तो खुश हैं, उनका जीवन तो सुखी है, और बुरा न मानना तुम भी तो एक क्लर्क ही हो।
1: हाँ हाँ, मैं एक क्लर्क हूँ, ये मेरी किस्मत है कि मैं साहित्यिक होते हुए भी एक क्लर्क हूँ, कर्म से धर्म से नहीं।
0: और अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारा धर्म?
1: अपनी तरफ से तो निभा रहा हूँ,
0: मगर गृहस्थ की गाड़ी अकेली मैं ही चला रही हूँ।
1: तुम चाहती हो साहित्यकार अपना कलम तोड़ दे और लून तेल लकड़ी के चक्कर में फंस जाए?
0: मैं चाहती हूँ साहित्यकार और कुछ नहीं तो अपने वादे निभाए।
1: कौन सा वादा भंग किया है मैंने?
0: एक हो तो बताऊँ, इंटरिम रिलीफ को लो, तब कहती थी सारी की सारी इंटरिम रिलीफ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मेरी रानी। क्या हुआ जिस रकम का?
1: वो जिस रिलीफ के लिए सरकार ने दी थी उस फंड में दे दी।
0: क्या मतलब?
1: कमला, हम लोगों के छोटे मोटे कर्जे उतर गए।
0: मगर ये कर्जे
1: क्या करूं? कमला, सारी तनख्वाह तो तुम्हें दे देता हूँ, कभी कभार कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़ते हैं।
0: सारी तनख्वाह? सारी तनख्वाह तो तुमने ऐसे कहा जैसे मैं तो सेविंग बैंक में जमा करवा देती हूँ ना, जानते हो घर का खर्च किस तरह चलाती हूँ। तुम क्या जानो, तुम्हें तो पड़ी रहती है अपनी गोष्ठियों की। मैं पूछती हूँ जी, क्या दिया है तुम्हारे साहित्य ने तुम्हें? नाम मात्र भी कुछ नहीं मिलता।
1: ना सही, पर कमला नाम तो है।
0: खाली नाम से रोटी तो नहीं चलती। मैं कहती हूँ तुम और कोई काम क्यों नहीं करते? ओवर टाइम लगाओ, सभी क्लर्क इतना इतना पैसा बनाते हैं।
1: ओवर टाइम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कमला।
0: जी हाँ, गोष्ठियों से फुर्सत मिले तब ना।
1: साहित्य मेरा जीवन है।
0: और मेरा जीवन? कभी ये भी सोचा है मैं अकेली पड़ी रहती हूँ घर में क्या करती हूँ? क्या मेरा दिल नहीं करता कभी बाहर घूमने को?
1: तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती, मैं कितनी बार कह कर हार गया।
0: बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं।
1: साड़ी? क्यों जी, वो साड़ी क्या हुई जो जनाब ने पिछले महीने ही खरीदी थी, मेरी अनलिखी कविता की रॉयल्टी?
0: वो अरे वो तो आउट ऑफ डेट हो गई।
1: ओहो, मुझे क्या मालूम था कि आजकल कपड़ों पर दवाइयों की तरह तारीखें पड़ी होती।
0: और देखो ना, अब साड़ी का फैशन ही कहाँ रहा है, अब तो चलता है कुर्ता पायजामा या लुंगी।
1: कुर्ता पायजामा और लुंगी?
0: हाँ हाँ, जमाने के साथ तो चलना ही पड़ता है ना।
1: डार्लिंग, जमाने के साथ चलना है तो मेरा साथ दो।
0: तुम्हारा साथ?
1: हाँ कमला, जैसे शादी से पहले तुम मिलने चली आती थी, अब भी आ सकती हो।
0: काश ऐसा हो सकता।
1: ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कितने अच्छे थे वो दिन।
0: हम रोज मिलते थे,
1: कहीं दूर निकल जाते थे,
0: कहीं एकांत में
1: मैं अपनी कविता पढ़ता था,
0: मैं उसे गा कर सुनाती थी,
1: तुम्हारी आवाज में जादू था,
0: तुम्हारी कविता में अमृत।
1: तब तुम्हें मेरी कविता से प्यार था,
0: तब तुम्हारी कविता में मैं थी, तब तुम्हें मुझसे प्रेम था।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रेम तो तुमसे अब भी है कमला। हाँ, कविता का रंग जरूर बदल गया है।
0: रंग बदल गया है या तुम बदल गए?
1: कैसी बातें करती हो कमला, मेरे लिए तो तुम अभी वही हो, मेरी कम्मो।
0: जाओ जाओ, बातें न बनाओ।
1: बातें न बनाओ तो तुम्हें कैसे बनाऊं?
0: बातों से नहीं, मेरे सुदेश बनकर मनाओ।
1: ओ, मेरी कम्मो, मेरी सपनों की रानी।
0: अब सपने साकार हो गए ना?
1: तुम्हें क्या हो गया है आज, तुम अपने आप को ऐसा क्यों समझती हो डार्लिंग? मेरा ख्याल है मैं नहीं तुम बदल गई हो। हाँ तुम।
0: हाँ हाँ मैं बदल गई हूँ।
1: हाँ, ना मेरे घर आने पर पहले सा स्वागत, होठों पे मुस्कान, ना आंखों में चमक, ना चेहरे पे वो खुशी। बस बस अब तो रह गया है बात बात पे लड़ना, बहस करना, झगड़ना।
0: हाँ हाँ मैं लड़ाकू हूँ ना, दिन भर लड़ती रहती हूँ ना दीवारों से, अकेली पड़ी रहती हूँ। फूट गई मेरी किस्मत।
1: किस्मत तो हमारी एक बंधन में बंध चुकी है भगवान।
0: तो कौन रोकता है, खोल दो नहीं बंधन, छोड़ दो मुझे, मैं आज ही चली जाऊंगी बाबूजी के यहाँ।
1: कमला डार्लिंग सुनो तो,
0: मैं नहीं रुकने की।
1: सुनो कमला, सुनो तो प्लीज।
2: क्यों जी, कोई है घर में?
3: आवाजें तो आ रही थी।
1: कौन है, कौन है, कौन?
0: मनोज और सीमा है।
1: अब क्या किया जाए?
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि झगड़ा रोक दिया जाए या जारी रखा जाए।
0: मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आज ही बाबूजी के यहाँ जा रही हूँ।
1: मगर कमला सरा सोचो, बाहर मेहमान खड़े हैं, तुम चाहती हो वो हमारा मजाक उड़ाए? क्या थोड़ी देर के लिए ये झगड़ा बंद नहीं हो सकता?
0: अच्छा अच्छा मान लेती हूँ, मगर एक शर्त पर।
1: किस शर्त पर बोलो?
0: मेहमानों के जाते युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा।
1: युद्ध विराम, ठीक है, मुझे मंजूर है।
4: अरे भाई अंदर से अपनी कहते रहोगे, बाहर से हमारी भी सुनोगे?
0: बुलाओ ना उन्हें।
1: अरे आइए आइए आइए, अरे आप हैं, आइए आइए आइए।
3: और आप क्या समझे थे?
2: कमला बहन, रेडियो क्यों बंद कर दिया?
0: रेडियो?
2: कोई नाटक सुन रहे थे क्या?
1: नाटक? अरे हाँ हाँ, वो बीवी का भाषण सुन रहा था।
3: अरे हाँ, ब्याह की वर्षगांठ मुबारक हो भाई।
2: हम तो बधाई देने आए थे।
1: धन्यवाद।
2: क्या प्रोग्राम है आज आपका?
1: प्रोग्राम?
3: जी हाँ, हम ये जानने आए थे कि आप ये पुण्य त्योहार कैसे मना रहे हैं।
0: पुण्य त्योहार?
2: आपका आपस में प्यार देखकर मानना ही पड़ता है आप एक आदर्श दंपति हैं।
3: ना कोई झगड़ा, ना कोई तकरार,
2: बस प्यार ही प्यार।
3: एक ने कहा,
2: दूसरे ने माना।
3: मैंने सीमा से बहुत दफा कहा है कमला बहन से कुछ सीख लो, कुछ
2: और
3: सीख
2: आपको लो। सुदेश भाई साहब से शिक्षा लेनी चाहिए, समझे?
3: बस सुदेश जी क्या बताऊं, हमारी श्रीमती जी तो तरह तरह सी बात पर झगड़ा कर बैठती है।
2: बिल्कुल गलत, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा आप देते हैं।
3: देखिए मैडम, पहल हमेशा तुम्हारी ओर से ही होती है और तुम खाम खाम बोलना शुरू कर देती हो।
2: तुम तो मेरी कोई सुनते ही नहीं हो, बस हंसना शुरू कर देते हो, जैसे मैं कोई पागल हूँ या।
0: सीमा ठीक कहती है, आपको उसकी बातों पर हंसना नहीं चाहिए
1: बल्कि रोना चाहिए।
0: और आप लोगों के सिवा हंसने की और आता है क्या है?
2: ये मर्द लोग हमारा दुख दर्द जान ले तो सारा झगड़ा ही ना खत्म हो जाए।
0: ये तो घर घर की कहानी है बहन, मर्द हमेशा अपनी मनवाना चाहते हैं, बस।
2: आप ठीक कहती हैं।
3: मगर सुदेश जी, मुसीबत तो ये है कि पढ़ लिख कर ये औरतें मर्दों पर अपना अधिकार जताना चाहती
1: हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ।
0: देखा देखा, मर्द कितनी जल्दी औरतों के खिलाफ एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: और औरतें मर्दों के खिलाफ अपना यूनाइटेड फ्रंट बनाने में जरा भी देर नहीं करती।
3: और औरतों का यूनाइटेड फ्रंट बजाय पति पत्नी में सुलह सफाई कराए तलाक दिलाने पर जोर देता है।
2: आप यहाँ भी बाज नहीं आए अपनी मट्टी उछालने में, तलाक की तारीफ के गुनगाने शुरू कर दिया आपने।
1: तो दोस्त, तुम्हारे यहाँ भी तलाक की चर्चा होती रहती है ना?
3: यहाँ तो केवल चर्चा ही होती है यार, बाहर के देशों में तलाक यूं मिलता है जैसे हमारे यहाँ बाजार में डबल रोटी।
1: और तो और, मर्द बेचारा काम काज से थका हारा मीठी नींद में दो चार खराटे भर ले तो अगले दिन तलाक।
0: और औरत खाने में जरा सा नमक ज्यादा डाल दे तो बेचारी को तलाक मिल जाती है।
2: तलाक तलाक तलाक, मैं तो तंग आ गई हूँ ये सुन सुनकर। तो दे दो ना, दिल का भड़ास निकाल लो ना।
3: सीमा, ऊटपटांग मुंह से निकालते हुए जरा तो सोच लिया करो, हम कहाँ हैं, किस जगह हैं।
2: तो घर चल के ही बात कर लेना, मैं जा रही हूँ।
3: सीमा सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शुक्र है चले गए, आदर्श पति पत्नी को देखने आए थे।
0: वो तो देख कर चले गए, अब क्या इरादा है?
1: क्या मतलब?
0: युद्ध विराम समाप्त किया जाए,
1: यानी लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाए।
0: हाँ
1: कमला डार्लिंग, छोड़ो भी गुस्से को।
0: नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ हमने कहा किस बात पे युद्ध विराम किया था?
1: युद्ध रुक नहीं सकता है।
0: जी नहीं, मैं अपना फैसला चाहती हूँ, बताइए। मैं क्या कह रही थी?
1: आप, हाँ आप शायद अपने बाबूजी के यहाँ जा रही थी।
0: हाँ याद आया, तो सुन लीजिए, मैं आज ही जा रही हूँ।
1: जा रही हो? ठीक है, मैं छोड़ आऊंगा, मगर जरा सोचो मेरी रानी, क्या आज ही आज हमारी शादी की वर्षगांठ है? याद है आज के दिन हमारा गठबंधन हुआ था और तुम उसे खोलना चाहती हो, मुझे छोड़ना चाहती हो? छोड़ना ही है तो छोड़ो अपनी जली कटी बातों को, अपने गुस्से को, अपने गर्म स्वभाव को।
0: तभी तो कहती हूँ ना, सुखी हो जाओगे मुझे छोड़कर।
1: ऐसी बातें करती हो कमो डार्लिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो देखो देखो देखो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में झांको, क्या मैं तुम्हारा सुदेश नहीं हूँ?
0: देखो अब तुम प्यार के ओछे हथियार पर उतर आए हो, जंग में मोहब्बत के शब्द इस्तेमाल करके तुम जंग के नियमों को भंग कर रहे हो।
1: जंग और मोहब्बत में सब जायज है डार्लिंग। कितनी खूबसूरत लगती हो तुम गुस्से में।
0: तुम्हारा मतलब है तुम्हें सुंदर दिखाई देने के लिए मैं लड़ती ही रहूं?
1: लड़ना भी एक आर्ट है डार्लिंग, और बिना बात के लड़ने वाला एक महान आर्टिस्ट है, कलाकार है।
0: देखो देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो।
1: उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है।
0: और तुम्हें आ रही क्या है?
1: इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।
0: हाँ, यानी मतलब ये हुआ कि मेरी बातें तलवार की तरह तीखी हैं।
1: ऐसी तीखी कम हो कि ये घायल प्रेमी आज तक तड़प रहा है।
0: और अब क्या चाहता है ये घायल प्रेमी?
1: सफेद झंडी दिखा रहा है सुलह की।
0: अब लड़ झगड़ कर मनाने चले।
1: बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर।
0: सुलह की शर्त क्या है?
1: वही पिछले साल वाली शर्तें, मैं वादा करता हूँ।
0: फिर वही वादों की शाम।
1: हाँ डार्लिंग, आज भी वही तारीख है, वही शाम है।
0: तो शपथ लो।
1: तुम भी साथ कहो।
0: हम शपथ लेते हैं,
1: हम आपस में नहीं लड़ेंगे,
0: नहीं झगड़ेंगे।
1: लड़ेंगे भी तो जल्दी सुलह कर लेंगे,
0: आज की तरह।

वादों की शाम आप सुन रहे थे मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोना मोहापात्रा के, बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत विशाल शेखर का।

अंतराल के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में सैयद कादरी का लिखा गीत, आवाज़ जुबिन की, फिल्म का नाम गैंगस्टर।

अभी आपने जुबिन गर्ग को फिल्म गैंगस्टर में सुना। अब सुनिए एक था टाइगर, इस फिल्म में वाजिद अली, श्रेया घोषाल, के और पलक मुच्छल को, गीतकार संगीतकार कौसर मुनीर और नीलेश मिश्रा।

अभी आपने मनोज मंतसर का लिखा गीत सुना, आवाज तुलसी कुमार की थी, फिल्म का नाम था बादशाह हो। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा।

0: एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए युगल गीत से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। फिल्म का नाम है इज्जत।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर।

0: गोविंदपुरा करधनी आदिनाथ सरोवर डेमिकला रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी GDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

लीजिए अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में सुनिए लोफर फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, रचनाकार आनंद बख्शी।

अब सुनिए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलशन बाबरा का लिखा गीत, आवाजें किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

0: अभी आपने आशा भोसले को फिल्म इजाजत में सुना, अब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए पारसमणी फिल्म में। असद बवाली ने गीत की रचना की है और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: वो जब याद आए, बहुत याद आए।

अभी आपने जूली फिल्म में किशोर कुमार को सुना। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की थी आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिलके काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी हैं, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस ज़माने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस ज़माने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूज़िक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूँ, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूज़िक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त

0: एक घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे। उनके हाथ में एक शैंपेन की बोतल थी और उन्होंने कहा, मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन का ये जाल बहुत जटिल है। कभी प्रेम तो कभी नफरत के बीच झूल रहे होते हैं हम। जिंदगी क्या क्या खेल खेल जाती है पता ही नहीं चलता। प्यार पाते पाते भी चूक जाते हैं हम। पास पहुंचते पहुंचते छिटक जाते हैं। हाथ पहुंच ही रहा होता है और अचानक फासला बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, और हम ठगे से खड़े रह जाते हैं बस।

कुछ सुरफिरे आपके दिलों से खेल जाते हैं, जज्बातों पे चोट कर जाते हैं, यहां तक कि आपकी जिंदगी से भी खेल जाते हैं कुछ लोग, और फिर दम घुटने लगता है। एक शरारत, एक धोखा, एक जालसाजी जिंदगी में तूफान पैदा कर देती है और हम जीना भूल जाते हैं। हर एक पे विश्वास करना भूल जाते हैं हम तब।

जब तुमने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे थे ना, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे थे। हाँ, जुल्फों के पेच अक्सर उलझा देते हैं प्यार को, जैसे कि हम उलझ कर रह गए, है ना? जितनी जल्दी हम प्रेम की कैद में जाना चाहते हैं, उतनी ही जल्दी सब छूट जाता है अक्सर, क्योंकि प्यार तो धीमी धीमी आंच पर पककर ही ऊष्मा और स्वाद देता है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीमार शब्दों से प्यार रोने लगता है, वहीं शब्द जब गहरे एहसास से आते हैं तो वही प्यार गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, नाचने लगता है और झूमने लगता है। शब्दों के इस खेल में कब शब्द बाण बन जाते हैं और कब शूल, क्या पता। लेकिन सच तो ये है कि प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। हाँ, प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए।

कहते हैं इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो किसी की भी मोहब्बत अधूरी न हो। कुछ प्रेम कहानियां बिना शोर के भी परवान चढ़ जाती हैं तो कुछ शोर शराबे में ही दब कर रह जाती हैं। तब वो खरोंच, वो याद, वो इश्क जो एक तरफा था सब दफन हो जाते हैं। असल में रिश्ते कमिटमेंट मांगते हैं, केमिस्ट्री नहीं।

प्यार में परत दर परत हम दिल की दीवारों में नए नए रंग चढ़ाते चले जाते हैं। प्रेम का रंग घोलकर हम उन दीवारों को रंगते चले जाते हैं। फिर एक रोज किसी ठोकर से या गहरी सीलन से वो परतें हटने लगती हैं और तब पीछे से वो धूसर रंग झांक रहा होता है। अरे, किसी को बिना शर्त चाहकर देखो तो कभी। दिल कोई प्रयोगशाला नहीं है और प्रेम कोई कांच की नली नहीं जिसे मनमर्जी से गर्म और ठंडा करके परखा जाए।

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है ये समाचारों का समय है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती

0: देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: SAW 3 MHz पर आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।